FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है बृहस्पतिवार, शक संवत 1948, श्रावण माह, 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त सन 2026। 5 बजकर

0: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है। 6 बज चुके हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
3: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे हैं। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य

राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, सीखना कभी बंद ना करें, हर दिन एक नया पाठ सिखाता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

इसी के साथ आज का वंदनवार कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
1: और ये है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हो चुके हैं। झरोखा में अब जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं। प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। 10 बजे हम समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 10:05 पर सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं का ये कार्यक्रम।

दिन में 11 बजे लक्ष्य कार्यक्रम में आपके करियर से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दिलवाएंगे। इस प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सेक्टर 42D चंडीगढ़ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जय प्रकाश कांत। इनसे की गई बातचीत आपको सुनवाएंगे।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर, पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में, और इसी तरह से शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचार। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे शाम 5:20 पर और 5:30 उमंग। एक और स्पॉन्सर प्रोग्राम सुनेंगे रात 9:15 पर, कानून और न्याय मंत्रालय के

न्याय विभाग का कस्टमाइज प्रायोजित कार्यक्रम रात 9:15 पर। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन आप सुनेंगे 6:30 पर, और इस कार्यक्रम के बाद आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद कुछ पंजाबी गाने, 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सुबह

0: और अब से कुछ देर में 6:35 पर सुनिए प्रोग्राम श्री रामचरित मानस। 7 बजे भोले बिसरे गीत, 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के, 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर प्रोग्राम चित्रलोक। ये तो था झरोखा आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम कुछ ही पलों में।
1: आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 279।

सीता की खोज में जाने को उद्यत पवन पुत्र हनुमान ने बार बार श्री राम का नामस्मरण करके सागर के समीप स्थित पर्वत पर से जो छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में जा धंसा। प्रभु के अमोघ वाणों की भांति उन्हें लंका की ओर बढ़ते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाही और इसके लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। मार्ग रोक कर सुरसा ने अपना विकराल मुंह खोल दिया और बोली, बहुत दिनों बाद देवताओं ने मेरा आहार भेजा है। हनुमान बोले, हे माता, मैं श्रीराम का कार्य करके लौट कर स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दो। किंतु उनकी विनती की अनसुनी कर सुरसा ने चार योजन में अपना मुंह खोल दिया। पवन पुत्र ने अपना आकार 8 योजन कर लिया। सुरसा ने 16 योजन में मुंह खोला तो हनुमान 32 के हो गए। उत्तरोत्तर बढ़ता सुरसा का मुंह 100 योजन का हुआ कि पवन पुत्र अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए और नतमस्तक होकर सुरसा से विदा मांगी। सुरसा ने पवन पुत्र के बलबुद्धि की था पाली थी। आशीष देकर उसने कहा, श्री राम का काम तुम अवश्य पूरा करोगे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 279।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला में आज की कड़ी है 13वीं कड़ी। कल मैंने कहा था कि कजरी को लेके मन में एक सवाल है। आइए शुभा जी से पूछती हूँ, आप भी सुने और क्या कहती हैं मैं भी सुनूं। शुभा जी, कजरी कहने से जो कुछ अर्थ का बोध होता है
1: जी,
0: तो क्या क्या है इसका जो भावार्थ?
1: अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कजरी जो शब्द है उसका सीधा संबंध कजरा या काजल से है, और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में उमड़ने वाले बादल कजरे के समान काले होते हैं, वैसे ही उसी प्रकार का साहित्य कजरी में आपको मिलता है, इसलिए कजरी या कजली भी कहा जाता है इसे। और कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि मिर्ज़ापुरी कजरी बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है, तो मिर्ज़ापुर जिले में विंध्यवासिनी देवी का स्थान है, जिनको कजली देवी भी कहा जाता है
0: जी।
1: और श्याम वर्ण की देवी हैं वो, उनके लिए ये चीज़ें गाई जाती हैं, इस कारण
0: कजली देवी
1: जी, कजली देवी
0: हाँ।
1: तो उसका भी एक संबंध इसके नामकरण से है। तो ये अनेक ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कुछ कथा कुछ किंवदंती कि कैसे इसका नाम कजरी पड़ा।
0: काले बादल जब आकाश में छा जाते हैं तो पूरा वातावरण ही कैसा स्याह स्याह सा, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है ना
1: जी।
0: और वाकई मन में फिर हुक उठने लगती है, फिर वो संयोग श्रृंगार हो वियोग श्रृंगार हो, उसकी जो मिठास है
1: जी बिल्कुल,
0: वो मिठास मुझे लगता है कि इस कजरी में
1: जी जरूर
0: खुल जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज आप क्या फिर से एक आध कजरी और सुनाएंगी?
1: एक कजरी का चयन किया है मैंने, भोजपुरी की कजरी है ये, और इससे मुझे जो एक बात याद में आई वो ये कि हर ऋतु के लिए अलग जो परिधान है वो भी बदलता है। अब अगर ग्रीष्म ऋतु में हम रेशमी कपड़ा पहन लें तो बहुत गर्मी लगेगी, या बहुत मोटा कुछ कपड़ा पहन लें, शॉल इत्यादि पहन लें तो गर्मी लगेगी। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु है तो किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ये भी इन गीतों में, हमारे भारतीय संगीत में ये भी आपको पता चलता है।
0: कितनी अनूठी बात है
1: जी, पूरी एक संस्कृति का चित्रण होता है। तो कौन सा पकवान, कौन सी चीज किस ऋतु में खाई जानी चाहिए, ये कैसी चीजें बननी चाहिए, क्या रीति रिवाज हैं, वो सब इनसे पता चलता है। तो इस कजरी में ये कहा गया है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा,
0: मतलब ये परिधान का संबंध प्रकृति से जुड़ा गया है इसमें, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: तो वो कहती है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा, बीचे बीचे रंगी है गुलाबी रंगरेजवा, मतलब साड़ी का जो बीच का जो हिस्सा है उसे तो गुलाबी रंगिएगा, लेकिन धानी रंग रंगी है किनारी रंगरेजवा।
0: वाह।

0: ही किनारी होनी चाहिए, बॉर्डर जो है वो धानी रंग का होना चाहिए। सरिया पहर हम बगिया में गईली, जब साड़ी पहन के बाग में बगीचे में गए, पड़े लागल सावन के फुहारी रंगरेजवा, भीग गई चुनरी वर्षा में, रिमझिम बरसे बदरवा, लागेला हिंडोला डारी डारी रंगरेजवा।
1: बहुत खूब,
0: झूले भी पड़े हैं
1: वो भी डाली डाली,
0: हाँ हर डाली पे झूल झूल झूलवा पर गावे कजरिया, उस पे झूले पे बैठ के कजरी गाई जाती है, झूल झूल झूलवा पर गावे कजरिया, पिया संग सुंदर नारी रंगरेजवा।
1: वाह,
0: तो ये वाह चीज आपको सुनाना चाहिए।
1: वो नारी तभी सुंदर होती है जब वो पिया के संग होती है। शुभा जी, आप मुझे ये तो कजरी हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मिर्जापुरी और बनारसी कजरी के बीच जो भेद है, कुछ गाने का भेद है?
0: भाषा का ज्यादा भेद है, जैसे कि आप जानती हैं कि हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, तो बनारसी बोली और मिर्जापुरी बोली, और उसी तरह भोजपुरी की भी कजरा, इनमें भाषा का ज्यादा,
1: चार कोस पे पानी बदला,
0: हाँ,
1: कोस पे पानी
0: बदली, और धुन भी जो है वो पारंपरिक जो धुन है
1: जी,
0: वो अलग अलग बदलती जाती
1: तो
0: है।
1: अभी ये जो कजरी आपने सुनाई है
0: जी,
1: जो शब्द बताए हैं वो मिर्जापुरी,
0: ये भोजपुरी कजरी है
1: जी
0: जी।

0: शुभा जी, मैं श्रोताओं के साथ कल के लिए इंतजार करूंगी। आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टैक्सी ड्राइवर फिल्म के इस गाने के साथ। आशा भोसले की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

आप सुन रहे थे नास्तिक फिल्म से इस गाने की झलकी, लेकिन इसके पहले आप सुन रहे थे शबाब फिल्म का गाना, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ों में शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत। आइए अब सुनते हैं नास्तिक फिल्म से वो गाना जिसकी झलकी आपने सुनी थी, लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के सुनिए बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना बूट पॉलिश फिल्म से मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में शंकर जयकिशन के बोल, संगीत है शैलेंद्र का।

0: अभी आप सुन रहे थे बूट पॉलिश फिल्म से ये गाना। इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और शंकर जयकिशन का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे अमर फिल्म से ये गाना, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आर पार फिल्म से ये गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: इंजेक्शन शेयर करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं गंगा जमुना, इस फिल्म से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे नया दौर फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत ओपी नैयर का। इसी के साथ आज का हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
5: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
7: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
1: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
2: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश पे बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
3: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
5: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुँच गया है।
6: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर

0: गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरल में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलु मॉल में और एजीमाला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
3: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक

0: पारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्ते दोस्तों, आज की त्रिवेणी में संकल्प की बातें होंगी। कई बार जब हम अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम किसी काम को करने या किसी काम को नहीं करने का संकल्प लेते हैं। इनमें से कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं और कुछ संकल्प आंशिक रूप से पूरे हो पाते हैं। हो सकता है हमारे संकल्प बहुत मामूली हों, लेकिन इतना तो तय है कि गंभीरता से इन्हें निभाने पर ये कोई न कोई उपहार हमें ज़रूर देते हैं। संकल्प हमारे जीवन को बदलने की कवायद रखते हैं। वे आंतरिक बदलाव लाते हैं, वे जीवन की नई शुरुआत करते हैं। चाहे हम अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हों या नया अपने भीतर कुछ विकसित करना चाहते हों, जब हम संकल्प ले लेते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस ओर हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुछ अच्छा करने का संकल्प तो लीजिए, फिर देखिए क्या होता है।

संकल्प का अर्थ ये नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा ही करना है। छोटी छोटी बातों का या छोटे छोटे कामों का संकल्प भी लिया जा सकता है, जैसे वजन कम करना, कर्ज चुकाना, पैसा बचाना, बेहतर नौकरी पाने की कोशिश करना, फिट रहना।

पौष्टिक भोजन करना, बेहतर शिक्षा पाने की कोशिश करना, नशे की आदत को छोड़ना, तनाव को कम करना, पैदल घूमना, परिवार को समय देना, ऐसा कोई भी संकल्प हो सकता है। बेशक सभी संकल्प सफल हो जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके साथ एक विश्वास भी छिपा होता है कि हम अपनी बेहतरी के लिए कुछ सोच तो रहे हैं या कुछ कर तो रहे हैं। हर संकल्प अपने आप में अच्छा होता है क्योंकि इसके साथ सकारात्मक संभावनाएं जुड़ी होती हैं।

छोटे संकल्प अक्सर बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। हर दिन 10 रुपए की बचत करना या हर महीने एक पौधा लगाना, ये बातें हमारे जीवन में बहुत भारी बदलाव तो नहीं ला पाएगी, लेकिन सफलता की ओर ये पहला कदम तो जरूर होगा। संकल्प अगर वास्तविक हो तो उनके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जबरदस्ती किसी काम के पीछे पड़ने से अच्छा है हम सहज और सरल संकल्प पहले लें। आज के व्यस्त दौर में किसी काम का संकल्प लेना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। ये संकल्प हमारी उन ख्वाहिशों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम पूरा तो करना चाहते हैं, पर समय की कमी और समर्पण के अभाव में अनदेखा कर देते हैं। सकारात्मक संकल्प मानसिक संतुष्टि में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए हो सके

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 लाख रुपीज और नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपीज। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक, तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू। SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

विक्रम का अगला गाना सुनते हैं कार्तिक कॉलिंग कार्तिक इस फिल्म से। शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज ये रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी को। इन्होंने सदमा, नागिन, मिस्टर इंडिया, चांदनी और लम्हे जैसी कई फिल्मों में आइकॉनिक रोल्स किए। पद्मश्री से सम्मानित श्रीदेवी का आज याद का दिन है।

सुन रहे हैं उनकी हाल ही की फिल्म इंग्लिश बिंग्लिश। फिल्म से ये गाना सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत।

आप सुन रहे हैं धड़क फिल्म से ही गाना, अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है अजय अतुल का।

0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।
1: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं बचना ए हसीनो, इस फिल्म से लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: आप सुन रहे थे ये गाना बचना ए हसीनो इस फिल्म से। वैसे इस फिल्म के कई गाने, खास तौर से इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बॉलीवुड रेट्रो से बहुत इंस्पायर्ड है, इसीलिए इस फिल्म के कुछ गानों में आपको राहुल देव बर्मन के गानों की झलकी सुनाई देगी। खैर, इस गाने को के म्यूज़िक को तैयार किया था विशाल शेखर ने और इस गाने को लिखा है अन्विता दत्त ने।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं दोस्ताना फिल्म से। विशाल ददलानी और श्रेया घोषाल की आवाजों में अन्विता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: इसी गीत के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 9:30 हुए हैं। अगला प्रोग्राम आज का अखबार।
3: आज का अखबार।
2: गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। इस प्रोग्राम में यानी आज का अखबार

और फिर साथियों देर किस बात की है, तिरंगा अपने हाथ में लेकर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। और आज की अगर बात करें दोस्तों, आज दिन है लेफ्ट हैंडर्स डे, यानी बाईं हाथ से लिखने वालों का दिन। ये भी अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा है और दुनिया की करीब 10% आबादी कहते हैं लेफ्टी है, यानी बाएं हाथ से काम करती है, लिखती है। और आपने भी अपने आसपास कभी ना कभी किसी को देखा होगा अपने बाएं हाथ से लिखते हुए, तो आप बड़ा अचरज करते हैं कि कमाल की बात है, जिस तरह से हम दाहिने हाथ से लिखते हैं उसी तरह से ये बाएं हाथ से लिख रहा है और इतना ज़बरदस्त लिख रहा है, इतनी स्पीड से लिख रहा है। और ये भी कहा जाता है कि जो बाएं हाथ से काम करते हैं, लिखते हैं, भाई उनका दिमाग बड़ा तेज होता है, वो बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों का दिन है आज, उनको सलाम करने का दिन है, क्योंकि ऐसे लोगों ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी मिसाल है जिसे आप ये पा सकते हैं कि वाकई जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनकी एक अपनी अलग जगह है। अगर बात करें लियोनार्डो दा विंची की, बराक ओबामा की, बिल गेट्स की, पॉल मैकार्टनी की और रतन टाटा की, ऐसे कई नाम हैं, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, हरियाणा की अंजलि फोगाट, ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि हाथ बायां होने से हुनर कभी कम नहीं होता। सचिन का बल्ला दाएं हाथ से लेकिन कलम बाएं हाथ से। आमतौर से लोग बाएं हाथ से लिखने वाले को लेफ्टी कहते हैं, ये उसकी पहचान है, वो गर्व भी है कि आप नहीं लिख सकते लेकिन वो तो लिखता है, दाने से तो काम करता ही करता है, बाने से भी करता है। रतन टाटा से ओबामा तक ये सभी जो पर्सनैलिटीज हैं लेफ्टी रही हैं। उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा भी बाएं हाथ से लिखते थे। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन भी इसी श्रेणी में आते हैं। और हमारे हरदिल अजीज अमिताभ बच्चन ने बताया कि करीब 4-5 साल की उम्र तक वो बाएं हाथ से लिखते रहे हैं, लेकिन

पिता के कहने पर उन्होंने दाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने में सक्षम होने की बात भी कही। आज दोस्तों दृष्टिकोण बदल चुका है। यदि बच्चा सहज रूप से बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है तो उसे केवल सामाजिक आदत या सुविधा के कारण हाथ बदलने के लिए मजबूर करना जरूरी नहीं माना जाता। और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ के ये खबर है आज के अखबार में कि चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में हर 10वां बच्चा बाएं हाथ

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब एक नज़र आज की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन पर प्रधानमंत्री की युवाओं से संघर्षों से सीखने और आत्मकथाएं पढ़ने की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा कि रील युग के युवा, याद रखें शॉर्टकट से छोटी हो सकती है जिंदगी। आत्मकथाएं दूसरों के जीवन संघर्षों को समझने का माध्यम, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो, हर सवाल का जवाब दूंगा। केंद्र ने कहा है कि बीबीएमबी मामले में पंजाब सहमति के करीब।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, कैश कांड मामला लोकसभा जांच समिति की रिपोर्ट में ये दावा।

मुंबई में भूस्खलन से 7 लोगों की मौत हो गई है, हिमाचल में मां बेटी की जान गई है, 18 अगस्त तक होगी भारी बारिश, मौसम का कहर जारी है, जम्मू कश्मीर के भी कई रास्ते बंद हो गए हैं। आपदा से पहले अब चंद सेकंड में मिलेगा अलर्ट, मेघदूत समेत 11 ऐप से बचेगी जान। अरुणाचल के ताक्सिंग में चीनी घुसपैठ का दावा, पीपीए की फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में जताई गई ये चिंता। ब्यास नदी का होगा हेल्थ ऑडिट, नए बिजली प्रोजेक्ट का तय होगा भविष्य। झारखंड भर्ती घोटाला, सीआईडी की पूछताछ में वित्तीय लेन देन का खुलासा, ईडी जांच के घेरे में 150 लोग, रिकॉर्ड खंगाले गए। छत्तीस साल बाद कश्मीरी पंडित सर्वानंद और बेटे के हत्यारों की तलाश, अपहरण कर हत्या के बाद शव पेड़ से लटका दिए गए थे। स्वतंत्रता सेनानी सर्वानंद घाटी में अनाथ बेटियों की कराते थे शादी, कौमी एकता की माने जाते थे मिसाल, एसआईए के 8 जगह छापे इस मामले में। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, हारमूज पर पूरा नियंत्रण, ईरान ने कोई कदम उठाया, नेस्तनाबूद कर देंगे, कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने। ईरान ने कहा कि समझौते पर लौटने की समय सीमा तय करे अमेरिका। आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और खेल कारोबार से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की।

कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में महंगे इलाज पर लगेगी लगाम, देश भर में एक जैसी होंगी दरें, बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच आपसी सहमति से तय होगी कीमतें, स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए समान नियम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज बनेगा, स्वास्थ्य बीमा को मिलेगा बढ़ावा। महिला उद्यमियों ने जेम पोर्टल पर किया 28,000 करोड़ से अधिक का कारोबार, 7 दिन में 12,400 रुपए सोना महंगा हुआ। और अब चलते हैं खेलों की दुनिया में। 1 साल से परिवार के साथ नहीं हुई मुलाकात, अब आया पदक। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स के रजत विजेता जेवलिन थ्रोअर आशीष यादव के लिए पिता की मेहनत है सबसे बड़ी प्रेरणा। AFC चैंपियन लीग 2 ईस्ट बंगाल 4-1 से जीतकर ग्रुप चरण में, ये है फुटबॉल। और भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले हर किसी की नजर में है, जीतने के लिए श्रीलंका की गुप्त तैयारी। गाले स्टेडियम में भारत के निरीक्षण के बाद पिच से छेड़छाड़ की कोशिश। मेजबान टीम में एक साथ 2 नवोदित

धीरे-धीरे शामिल पुराने खिलाड़ी भी बुलाए गए। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। अखबारों से ली गई जानकारी इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, साथ साथ में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम देते रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन कार्यक्रमों में किसी एक कार्यक्रम की चर्चा करते हैं इसी प्रोग्राम में। आज उस्ताद योजना के बारे में बात कर लें। उस्ताद योजना यानी अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स, क्राफ्ट,

0: फॉर डेवलपमेंट। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों, बुनकरों, हस्तशिल्पकारों और पारंपरिक कला से संबंध रखने वाले कलाकारों के उत्थान के लिए ये योजना शुरू की है, ताकि इन कलाकारों को आज की मॉडर्न तकनीक से रूबरू कराया जाए और इनकी कला में निखार आ सके। दरअसल देश में बुनकर और हस्तशिल्पकार वही पुराने तरीके से काम करते आ रहे हैं, आज की आधुनिक तकनीक से वो कहीं ना कहीं जुड़े नहीं हैं। लेकिन इस योजना का लाभ उठाकर ऐसे तमाम कलाकार अपने अपने काम में उस्ताद बन सकते हैं। उस्ताद योजना में 45 वर्ष की आयु तक आने वाले लोगों को किसी तरह की कुशलता जो 3 से 8 महीने तक सिखाई जाती है, इसके लिए सरकार हर महीने 3,000 रुपये स्टाइपेंड देती है और इसमें 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। 33% मास्टर ट्रेनर की फीस जो है 50,000 रुपये महीना है। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.minorityaffairs.gov.in। तो ये है योजना, उस्ताद योजना, प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, विकास के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए हैं उनमें से एक ये योजना है, ये कार्यक्रम है जिसके बारे में आज हमने चर्चा की, आपको बताया। अब एक और इन्फॉर्मेशन आपसे साझी कर लें साथियों, ये जो इन्फॉर्मेशन है जेम्स ऑफ इंडिया की है। देश के हर जिले की अपनी खास पहचान है, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी है, आप सभी को मालूम है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स उन्हें अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में हमारे शहर चंडीगढ़ को भी चुना गया है। अब इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है? माई वेव्स, MYWAVES, माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से, प्ले स्टोर में जाकर माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर लॉगिन करें। मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और उसे सबमिट कर दें। प्रविष्टियां यानी एंट्रीज 1 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं और 31 अगस्त 2026 तक स्वीकार की जाएंगी, इसके बाद नहीं। तो अगर आपके शहर, गांव या जिले में भी कोई ऐसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी है जिसे देश को जानना चाहिए, तो उसे कैमरे में कैद कीजिए और जेम्स ऑफ इंडिया का हिस्सा बनिए, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो उठाइए बीड़ा, खींचिए 1 से 3 मिनट की वीडियो और अपलोड कर दें माई वेव्स में जाकर। यहां जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज को आपने लॉगिन करना है, बस इतना ही करना है। यह तो थी जेम्स ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमने आपसे साझी की। अब यहां एक छोटा सा अंतराल।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से?

0: मैं बताता हूँ, HIV AIDS से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें। नई सुई का ही प्रयोग करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV AIDS फ्री बनाएं। HIV AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट AIDS कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: साथियों, अब प्रोग्राम में समय बहुत कम बचा है। चलते चलते एक नज़र आज की लोकल हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। 15 अगस्त को घर से निकलने से पहले देख लें अपना अपना रूट। कई सड़कें रहेंगी बंद, सुबह 6:30 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन। परेड खत्म होने पर ISBT 17 का रूट भी बदलेगा। शाम 3 बजे से दोनों लोक भवनों के आसपास भी बदलाव होगा। चंडीगढ़ में 14 से 18 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। और चंडीगढ़ में जवानों ने जगाया राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की धुनों से गूंजी सुखना लेक। चंडीगढ़ में डिजिटल रुपए से मिलेगी खाद्य सब्सिडी। 14 से नई व्यवस्था, यानी 14 अगस्त से। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में बिजली आपूर्ति होगी बेहतर। नया 11 केवी फीडर चालू हो गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में 4 दशक पुराना कम्युनिटी सेंटर बदलेगा नए रंग रूप में। 7.84 करोड़ से होगा निर्माण। मनीमाजरा में बनेगी 3 मल्टी लेवल पार्किंग। कमिश्नर ने जारी किए इस संबंध में निर्देश। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव सितंबर के पहले सप्ताह में संभव। और पंजाब यूनिवर्सिटी को डेयरी उत्पादों में ओमेगा 3 मिलाने की नई तकनीक पर मिला पेटेंट। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब आज का अखबार कार्यक्रम समाप्त करने की अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
8: आज का अखबार।
7: अभी आपने आज का अखबार कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 10 बजे हैं। समय हो चला है समाचारों का, जिन्हें हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
9: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से आरंभ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में आज निजी सदस्यों के विधायी प्रस्ताव भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
10: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति

0: अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
1: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को आज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प लगन और साहस रखता है वो जीवन की चुनौतियों से कभी नहीं हारता। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का कल शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस पर की गई इस पहल का उद्देश्य गांधीनगर कलोल और सानंद विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बच्चों को पढ़ने की आदत से जोड़ना और उन्हें गांव में ही ज्ञान के व्यापक संसाधन उपलब्ध कराना है। इस ऐप से अब तक 752 पुस्तकालय जुड़ चुके हैं जबकि 280,000 पुस्तकों के भंडार वाले 4 बड़े पुस्तकालयों को ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ जोड़ा गया है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसका संज्ञान लेने और बलूच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा है कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके असर से आज गंगा के पश्चिमी भाग और उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: 10:05 हो चुके हैं। अब बारी है कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले एक फिल्मी रचना, आपकी कसम, इस फिल्म से किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की लिखी रचना, राहुल देव बर्मन के संगीत में।

अभी आपने किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के आवाजों में आपकी कसम इस फिल्म से ये रचना सुनी, आनंद बख्शी की लिखी हुई, राहुल देव बर्मन के संगीत में।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: और दोस्तों, अब आपको हौले हौले सहलाएगी ये गैर फिल्मी गजल. फनकार हैं जगजीत सिंह.

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशन ओपन है 1 August से 31st August 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: और अब सुनिए फिल्मी गाना। ये फिल्म है बागी, आवाजी हैं मोनाली ठाकुर और साथियों की कुमार के बोल हैं संगीतकार मीत ब्रदर्स।

0: अभी आपने नॉन फिल्मी गीत सुना तुलसी कुमार और मिलिंद गाबा की आवाजों में।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों रचनाओं का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम जारी है, हम आपको याद दिलाते दिन में 11 बजे लक्ष्य कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सेक्टर 42D चंडीगढ़ के HOD डॉक्टर जयप्रकाश कांत से। दिन में 11 बजे होटल मैनेजमेंट में करियर के बारे में जानकारी दी जाएगी। 11:30 पर प्रोग्राम सुनिए फरमाइश आपकी। सफर सुरीला सा प्रोग्राम में अब बारी है फिल्मी गाने की। किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में गाना है अनजान के बोल हैं, बप्पी लहरी का संगीत है और ये फिल्म है डिस्को डांसर।

राज बर्मन की आवाज में अभी आपने ये नॉन फिल्मी गाना सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सफर सुरीला सा। अगला गाना फिल्मी है, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में कुमार के बोल हैं, संगीत शरीब और तोशिका।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने कस्मे वादे फिल्म से ये गीत सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम FM 107.2 MHz पर विविध भारती चंडीगढ़ से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब हम आपको फिल्मी रचना सुनवा रहे हैं। योद्धा फिल्म से ली गई है ये रचना, बी पराग और साथियों की आवाजों में ये गीत।

0: अभी आपने योद्धा फिल्म से ये गीत सुना, बी पराग और साथियों की आवाजों में। इस गीत के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रोग्राम लक्ष्य।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। लक्ष्य कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। इस प्रोग्राम में हम जब भी आपसे मिलते हैं आपके करियर से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आते हैं। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सेक्टर 42D के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जय प्रकाश कांत। होटल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देंगे, किस तरह से इस फील्ड में करियर बनता है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कैसा टेम्परामेंट होना चाहिए और स्टूडेंट्स की अपनी इनपुट क्या होनी चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से डॉक्टर कांत आज इस प्रोग्राम में बताएंगे। और हम ये भी आपको बताएं दोस्तों कि डॉक्टर कांत को 8 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं और इनके नाम पेटेंट भी हैं, रिसर्च का काम भी इन्होंने किया, लगभग 100 पेपर्स इन्होंने रिसर्च के तैयार किए हैं, तो इस क्षेत्र में इन्हें अच्छा खासा अनुभव है। इन तमाम बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर जय प्रकाश कांत, प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे इस प्रोग्राम में आके, और थैंक यू आकाशवाणी का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था आज से 3-4 साल पहले, तब भी मैंने होटल मैनेजमेंट पे काफ़ी बात करी थी, और ये प्रोग्राम काफ़ी यूजफुल है। मेरे को बहुत सारा फीडबैक भी आया था, बहुत स्टूडेंट ने मुझसे बात करी थी।
1: होटल मैनेजमेंट एक हॉट ऑप्शन के रूप में सामने आया है, बहुत सारे बच्चे इसमें अपना करियर बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करूंगा। होटल मैनेजमेंट उन बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन के, एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है। हमारी फील्ड में इतनी वर्सटैलिटी है, इतनी विविधताएं हैं, इतने ऑप्शन हैं बच्चे के पास कि बच्चा वो फूड एंड बेवरेज सर्विस में या फिर फूड प्रोडक्शन में, जहाँ अगर उसे किचन का शौक है, उसे सर्विस में जाना है तो सर्विस में लोगों से इंटरेक्ट करने का उसे बहुत अच्छा, अगर उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ, तो हमारे यहाँ पर बातचीत करने के लिए, लोगों को मैनेज करना, हमारी तो इंडस्ट्री मतलब ये ग्लोबल इंडस्ट्री है।
1: हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, और इन तमाम विविधताओं के बारे में हम आपसे जानेंगे। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे इस छोटे से शहर चंडीगढ़ में एक नहीं, दो नहीं, तीन इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट के, क्या आई एम राइट?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक तो है आपका चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि 42D में है, और 42D में एक है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, वो भी इसी सेक्टर में है, और एक जो इंस्टीट्यूट है वो है होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म का पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। आप हमें ये समझाइए ब्रीफ में कि ये जो तीनों इंस्टीट्यूट हैं किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं?
0: जी देखिए, चंडीगढ़ अपने आप में एक एजुकेशन सिटी है,
1: जी
0: चंडीगढ़ एक टूरिज्म सिटी भी है, और चंडीगढ़ का यही सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर बहुत तरह के इंस्टीट्यूशन हैं। होटल मैनेजमेंट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है इस शहर में। 12-13 किलोमीटर का हमारे शहर का डायमीटर है, और उस शहर में तीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। 1973 में हमारा कॉलेज सबसे पहले आया था, 54 ईयर्स के आसपास हमें हो गए हैं इस शहर में। सबसे पहले फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट होता था जो सेक्टर 26 में था, फिर 1994-95 में ये यहाँ पर 42 सेक्टर में शिफ्ट हुआ था। हम पहले डिप्लोमा कोर्सेज को रन करते थे। श्रीनगर में कॉलेज था, अभी भी है वहाँ पर, IHM श्रीनगर। वहाँ से श्रीनगर में जब दिक्कत आई 80s के आसपास में, कुछ परेशानियाँ वहाँ पर आई, तो वहाँ की फैकल्टी को यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए, एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए सोचा गया। चंडीगढ़ में एक सेंट्रल IHM भी होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक IHM यहाँ पर बनाया जिसका नाम रखा गया डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। और हमारा तब FCI था, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, जो कि 2006 में फिर वो भी एक डिग्री कॉलेज में उसको अपग्रेड कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। अब ये जो दोनों ही कॉलेज हैं, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट,
1: जी
0: डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है,
1: जी
0: उसको जो फंडिंग है या फिर उसकी जो गवर्निंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है,
1: डायरेक्ट।
0: हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से डायरेक्ट है। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उसको डायरेक्टली गवर्न करते हैं।
1: ओके ओके।
0: और जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है।
1: अच्छा,
0: लेकिन जो एफिलेशन है दोनों ही कॉलेज की वो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट से ही एफिलेटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक बॉडी है। होटल मैनेजमेंट के टोटल ओवरऑल पूरी कंट्री में 91 इंस्टीट्यूट है, जिसमें
1: की मैनेजमेंट देखता
0: है। हाँ जी, जिसमें से 21 सेंट्रल IHM से, जिसमें से एक डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट है, और 35 स्टेट IHM है, उसमें से एक चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भी, और बाकी 35 शायद FCI है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट।
1: हमने तो सोचा था कि आपको छोटी सी बात बताएं, ये तो और बहुत बड़ा दायरा
0: जी है। जी बहुत बड़ा दायरा है। और नेशनल
1: जो हमारा होटल मैनेजमेंट का और टूरिज्म का डिपार्टमेंट
0: जो पंजाब
1: यूनिवर्सिटी में,
0: जी 2006 में शायद 2006 या 7 में पंजाब यूनिवर्सिटी में ये इंस्टीट्यूट खुला। टूरिज्म के ऊपर जो एक, अगर किसी बच्चे को या फिर किसी को भी लगता है कि मुझे टूरिज्म में पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन पंजाब यूनिवर्सिटी ने खोला था, टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट। टूरिज्म की वहां पर अभी BTS बैचलर टूरिज्म स्टडीज और मास्टर्स टूरिज्म स्टडीज भी कराते
1: साथ
0: हैं,
1: साथ होते हैं,
0: और फिर उन्होंने होटल मैनेजमेंट का भी साथ में डिपार्टमेंट खोला, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है शहर की, और उसमें भी करीबन शायद 30 बच्चों को वो एडमिशन देते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के पास पढ़ने के।
1: डॉक्टर जयप्रकाश, ये मैंने इसलिए पूछा कि आम तौर से जब होटल मैनेजमेंट की बात होती है या कोई इसमें एडमिशन लेना चाहता है या इस तरफ करियर बनाना चाहता है, तो उसको चंडीगढ़ में ये तीन कॉलेजेस नजर आते हैं, इसी वजह से आपसे मैंने ये विस्तार से जाना और आपने बताया, और बड़ा अच्छा लगा कि जिस इंस्टीट्यूशन को आप हेड कर रहे हैं वो 1973 से काम कर रहे हैं।
0: जी 1973 से, हमें बहुत ही प्राउड फील होता है कि अभी हमने 4 साल पहले हमने अपने 50 ईयर्स कंप्लीट करे हैं।
1: आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।
1: अच्छा डॉक्टर जयप्रकाश, अब ऐसा करते हैं कि अब हम चलते हैं आपके कैंपस।
0: जी जी प्लीज, ठीक है, मैं इनवाइट करता हूँ आपको, स्वागत करता हूँ आपका।
1: तो ये बताइए, जो आपका चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का कैंपस है, इस कैंपस में किस तरह की ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए? और जब होटल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो उस मैनेजमेंट में क्या क्या शाखाएं जो हैं वो करियर बनाने के लिए?
0: जी, हमारा इंस्टीट्यूट जैसा कि चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सेक्टर 42D में सिचुएटेड है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूट है हमारा। हमारा पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है भारत में जिसका कि अपना खुद का कमर्शियल होटल भी है और 26 रूम की प्रॉपर्टी है जिसमें कि रेस्टोरेंट है, बार भी है। ये भी एक बहुत खास बात है कि किसी भी IHM में जिसमें कि बार भी हो, ऐसा कोई होटल नहीं है उनके साथ। इसमें एक और खास बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्पिटल भी होना जरूरी है, तो वैसे ही हमारा अपने आप में एक बिल्कुल अलग तरह का इंस्टीट्यूट है जिसमें कि बच्चे को हम फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग,
1: उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं,
0: हम उसको डेली रूटीन में हम उसको होटल में देते हैं।
1: मतलब क्लास वो अपने इंस्टीट्यूट में लगाएगा, क्लास में लगाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए
0: ट्रेनिंग
1: अपने इंस्टीट्यूट के होटल में
0: लैब भी है जहां पर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता है, प्लस हम रेगुलर बेस पे उसे होटल भी भेजते हैं ताकि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अच्छे से एक्सपोजर ले पाए।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और हमारे कॉलेज में हम टोटल जो इस टाइम पे 2 डिप्लोमा रन कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए
1: जी,
0: फूड एंड बेवरेज फूड प्रोडक्शन का जो डिप्लोमा है जिसमें कि बच्चा 1.5 साल के लिए एडमिशन लेता है, 1 साल हमारे पास रहता है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। वो किचन में अपना किचन के जितने भी बेसिक्स हैं और आगे चल के शेफ बनने के लिए उसको जो कुछ भी सीखना है वो सब हम अपने कॉलेज में सिखाते हैं।
1: अच्छा, वो 6 महीने की ट्रेनिंग आपके पास ही है?
0: 6 महीने की ट्रेनिंग वो चाहे तो हमारे होटल में भी कर सकता है। इसके अलावा बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि वो शहर में किसी और बड़े होटल में या फिर भारत में कहीं और, इनफैक्ट कुछ बच्चे तो विदेश भी जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में डिप्लोमा है, वो भी 1.5 साल का ही है, 1 साल हमारे पास और 6 महीने की ट्रेनिंग है। हमारा जो फ्लैगशिप जो कोर्स है दैट इज BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 3 साल का होता है, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट से ही एफिलेटेड है। इनफैक्ट ये डिप्लोमा भी है जो नेशनल काउंसिल से ही एफिलेटेड है।
1: मतलब डिग्री में आप सब कुछ पढ़ाते होंगे?
0: हाँ जी, डिग्री में हमारी जो डिग्री है वो JNU से एफिलेटेड है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की,
1: दिल्ली से
0: वो बच्चों को डिग्री देती है
1: जी, जी जी।
0: और जो जितने भी सिलेबस है, हमें जो गाइडलाइंस है, वो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट से आती है
1: जी जी
0: जी। बच्चा हमारे पास 3 साल के लिए आता है डिग्री में और 1-1 साल के लिए दोनों डिप्लोमा में आता है। जो डिग्री के लिए एडमिशन होते हैं वो बच्चा NTA नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट हर साल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है और NTA उसको कंडक्ट करता है।
1: अच्छा, यहाँ थोड़ा आपको मैं रोकता हूँ, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है,
0: हाँ जी,
1: इसमें आप बेसिकली क्या जज करते हैं
0: जी?
1: केवल करंट अफेयर्स या उसकी?
0: नहीं, हमारे पास बच्चे को हम जज करते हैं उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि बहुत ही मतलब 10वीं 11वीं के लेवल के आते हैं। इसके अलावा उसको रीजनिंग, लॉजिक और जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश
1: लैंग्वेज,
0: जनरल साइंस, जर्नल साइंस, बहुत ही नॉर्मल साइंस, इस तरह क्वेश्चन पेपर आता है। जनरली लेवल जो मैंने देखा है कि वो 10th-11th लेवल का एग्जाम क्वेश्चन पेपर आता है। बच्चे को 12th पास होना चाहिए और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो जब एंट्रेंस एग्जाम हर साल दिसंबर के मंथ में नोटिफिकेशन आती है और ऑलमोस्ट अराउंड अप्रैल में इसका एग्जाम होता है और फिर हमारे जितने भी IHMs हैं और उसके रैंक के हिसाब से बच्चे ने जो चॉइस भरी है उसके हिसाब से उसको एडमिशन मिल जाता है।
1: तो ये जो एग्जाम है वो आपके इंस्टीट्यूट में होता है या ऑनलाइन होता है?
0: जी नहीं, इसका जो एग्जाम है कोई शहर में एक सेंटर बना दिया जाता है,
1: नेशनल टेस्टिंग
0: एजेंसी के द्वारा।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो उसमें फिर उसका एग्जाम वहां पर होता है।
1: मान लीजिए कि बच्चे ने अब टेस्ट क्लियर किया है, वो आपके पास आया एडमिशन लेने के लिए
0: जी,
1: तो आप इंटरव्यू तो लेते होंगे?
0: जी नहीं, उसका
1: इंटरव्यू नहीं,
0: नहीं इंटरव्यू नहीं।
1: अच्छा,
0: उसका इंटरव्यू नहीं है। हम इस बात पे बिलीव ही नहीं करते कि हमें बिल्कुल बेस्ट चाहिए। हमें बस एक कैंडिडेट चाहिए, हम उसको बेस्ट बना देंगे।
1: तो स्टूडेंट्स के लिए इससे अच्छी ऑप्शन क्या हो सकती है कि एग्जाम में अच्छा करके दिखाइए
0: जी। बच्चे का जो बेसिक चेक किया जाता है कि उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा बहुत उसे पता है, इंग्लिश का उसे ज्ञान है,
1: लॉजिकली
0: कितना सोचता है, रीजनिंग उसकी कितनी अच्छी है और जनरल अवेयरनेस उसका कितना है।
1: अच्छा डॉक्टर कांत, मुझे लगता है कि होटल मैनेजमेंट के फील्ड में कम्युनिकेशन जो है वो प्रायोरिटी पे रहती है।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: चाहे आप हिंदी जानते हैं चाहे आप इंग्लिश जानते हैं
0: जी,
1: बच्चे में कुछ तो आप देखते होंगे ना, कुछ कोई उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसके

0: डॉक्टर जयप्रकाश कांत चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आज इस लक्ष्य प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: शुक्रिया सर।
0: अब आप हमें ये बताइए कि एडमिशन आपके इंस्टीट्यूट में कब शुरू होती हैं, इनका ऑनलाइन जो है एडवर्टाइजमेंट आती है, अखबारों में आती है, इसके बारे में समझाइए।
1: जी, जैसा कि मैंने बताया, डिग्री में जो एडमिशन होता है उसकी तो नोटिफिकेशन नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से,
0: जो कि वहां क्लिक करेंगे तो
1: डिग्री में जो एडमिशन है वो उसकी नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाती है
0: डिग्री के लिए।
1: और फिर उसका जो एडमिशन प्रोसेस चलता है, जनरली जो अभी भी उसके एडमिशन प्रोसेस चल ही रहा है, काउंसलिंग हो गई है, बच्चों ने एडमिशन लिया, कुछ एक आइटम्स में बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स जहां पर अवेलेबल है, तो अभी भी स्टूडेंट चाहे तो एक लास्ट एग्जाम देके और एडमिशन ले सकता है।
0: तो आपके कॉलेज में डिप्लोमा और डिग्री दोनों है ना?
1: हाँ, डिप्लोमा डिग्री दोनों है। तो डिग्री में एडमिशन अभी भी ओपन है।
0: अभी ओपन है,
1: एक लास्ट एग्जाम अभी बचा
0: हुआ
1: है।
0: हम अपने श्रोताओं को कहेंगे कि अगर वो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो भाई अभी
1: बिल्कुल
0: इंतजार क्या है, प्रोग्राम सुनने के बाद पहुंच जाइए।
1: जी,
0: ये प्रोसेस कब तक चलेगा?
1: अभी
0: बस ये जब आपने कहा ना कि अभी भी ले सकते हैं, तो वो टाइम क्या है?
1: अगले 10-15 दिन तक
0: ले
1: सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और डिप्लोमा के जो हमारे एडमिशन होते हैं वो हम प्रोसेस शुरू करते हैं अप्रैल एंड से शुरू करते हैं।
0: अच्छा।
1: मई के फर्स्ट वीक से,
0: अप्रैल के आखिर में
1: और मई के फर्स्ट वीक में हमारी नोटिफिकेशन आ जाती है।
0: तो ऑनलाइन
1: हमारे ऑनलाइन आती है, हमारी वेबसाइट पे भी होती है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है ये।
0: आपकी वेबसाइट क्या है?
1: www.cihmct.co.in।
0: एक बार फिर से दोहरा दीजिए,
1: www.cihmct.co.in।
0: जी, ये वेबसाइट है आपकी।
1: हाँ जी,
0: तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
1: जी
0: जी,
1: फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को हमारे कॉलेज में भेज सकते हैं। इसके बाद जून के महीने में हम उनको, जितने भी बच्चों ने अप्लाई करा हुआ है, फिर हम उनको काउंसलिंग के लिए जुलाई के महीने में बुलाते हैं। जुलाई का महीना
0: तो फिलहाल निकल चुका है।
1: बिल्कुल निकल चुका है। अभी हमने जस्ट काउंसलिंग खत्म ही करी है।
0: अच्छा, हो गई।
1: और हाँ जी, जनरल वाली कैटेगरी की तो सारी सीटें भर गई हैं, लेकिन अभी भी जो बच्चे ओबीसी और एसटी की सीटें हमारे यहाँ फिजिकल हैंडीकैप की
0: अभी
1: सीटें
0: हैं
1: वो अभी भी खाली है।
0: आरक्षित वर्ग की
1: जो सीटें हैं, कुछ आरक्षित वर्ग की सीटें खाली है, तो वो लोग अभी भी हमें अप्लाई
0: कर
1: कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: तो उसके लिए आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे या ऑनलाइन?
1: जी, उसके लिए वो हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉलेज आ सकते हैं एडमिशन के लिए। और जो जो सीटें हमारी खाली हैं, जो दो डिपार्टमेंट है, जैसा मैंने बताया, बेकरी कन्फेक्शनरी में और फूड प्रोडक्शन डिप्लोमा में, तो हम वो सीटें उनको दे देंगे।
0: तो आपके कॉलेज का नंबर भी होगा?
1: जी, 9777998086, ये हमारा कॉलेज का नंबर है।
0: और किसी भी वर्किंग डे वाले दिन
1: हमें 9 से 5 के बीच में कैंडिडेट कांटेक्ट कर सकते हैं।
0: अभी आरक्षित वर्ग के लिए सीटें हैं और वो कांटेक्ट कर सकते हैं।
1: हाँ जी,
0: और ज्वाइन कर सकते हैं डिग्री में भी और डिप्लोमा में भी।
1: और एक और खास बात, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो हमें गाइडलाइन दी है, डिप्लोमा और डिग्री में
0: जी
1: एज का कोई बार नहीं है, किसी भी एज का जो है कैंडिडेट वो इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए।
0: बिल्कुल सही है। आपके यहाँ कोई ऐसा भी बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें बाहर जाने से पहले, मार्केट में जाने से पहले?
1: जी जी जी, बहुत ही

0: अच्छा सवाल किया आपने। अभी जैसे कि हम अलग अलग बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें कि वो अपने पर्सनालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन कराते हैं हम जिसमें कि बच्चा बहुत ही अलग तरह से निखर के आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो हमारा कॉलेज जस्ट ओपन ही हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, और अभी इसी मंथ में हमारे पास एक बहुत बड़ा एक शेफ वर्कशॉप होने वाला है जिसमें कि यूएस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें यूएस के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम किस तरह से अलग अलग कुजीन उनके हम बना सकते हैं, क्या क्या डिशेस बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यूथ फेस्ट होता है चंडीगढ़ में, जिसमें कि बच्चे पूरा प्रोग्राम बाहर से विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं, उन सबको हैंडल करना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन देखना, उनको सिटी घुमाना, 3 दिन का प्रोग्राम होता है वो, और पूरा 3 दिन का प्रोग्राम स्टूडेंट ही हैंडल करते हैं।
1: क्या बात है।
0: इसके अलावा हमारे पास नॉर्थ इंडिया पैथिसरी कंपटीशन होता है जो कि अपने आप में पूरे भारत में पहला एक ऐसा कॉलेज है जो कि बेकरी और कन्फेक्शनरी में इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं कि हम जितने भी नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस हैं उनसे स्टूडेंट आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं, वो हमारे पास आते हैं 3 दिन के लिए रहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे केक मेकिंग है, ब्रेड मेकिंग है, पैतिसरी है, पैतित फोर्स है, ये सब अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को बनाते हैं, वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 26 से 30 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं हर साल। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को जिसमें कि वो सीखते हैं प्लस आगे बढ़ते हैं,
1: यानी कंप्लीट एक्सपोजर मिलता है उनको।
0: जी जी। इसके अलावा हम बहुत तरह के जैसे कि कभी कश्मीरी थीम लंच, कोरियन थीम लंच, मैक्सिकन थीम लंच, दिवाली थीम लंच, क्रिसमस थीम लंच, ये सब हम ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टूडेंट ही ये सब करते हैं हमारी गाइडेंस में।
1: आपकी बातें सुन के तो हमारे मुंह में भी पानी आ गया, आप हमें हम कब आएंगे बताइए।
0: जी जी, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आकाशवाणी को कि आप हमारे कॉलेज आइए।
1: अच्छा डॉक्टर जयप्रकाश कांत, ये तमाम बातें आपने बताई हैं और आपके बारे में भी सुना है कि आपको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, पेटेंट भी आपके नाम है, रिसर्च वर्क भी आपने किया है, 11-12 आपने किताबें भी लिखी हैं।
0: जी,
1: ये
0: जी,
1: सब
0: जी।
1: काम कहाँ बैठ के करते हैं आप?
0: जी मैं नहीं नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो ऐसा कोई भी कर सकता है।
1: वही आपसे जानना चाहते हैं कि आप सबके लिए एक प्रेरणा है।
0: जी, जो मैंने काम करे हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में, मैंने उन सब्जेक्ट की किताबें लिखी थी पहले जिनकी कोई किताबें नहीं थी, इसको देखकर मुझे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न का अवार्ड मिला था भारत सरकार से।
1: वाह, राष्ट्रीय
0: शिक्षा रत्न। जी
1: जी।
0: फिर मेरे को राष्ट्रीय युवा रत्न भी मिला है, इसके अलावा एजुकेशन आइकॉनिक अवार्ड, इस तरह के मुझे करीबन 8 तो बिल्कुल मेन नेशनल अवार्ड है और फिर बहुत सारी और भी संस्थाओं से मुझे अवार्ड मिले हुए।
1: कितने आराम से आप बता रहे।
0: जी ये कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एकेडमिक्स में आए हैं तो आपको स्टूडेंट्स के लिए, ये मैं प्रेरणा जो देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए देता हूँ कि हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: अच्छा, पेटेंट किस बात के लिए आपको मिला?
0: जी, पेटेंट फूड में हमने एक बिस्किट इन्वेंट किया था, उसमें इतनी कैलोरी है कि आप लगभग 6 घंटे तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं।
1: हाँ।
0: सिर्फ एक बिस्किट, स्पेशली स्पोर्ट्स पीपल के लिए था वो।
1: हाँ।
0: कि जो कि अभी अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी फिजिक को कंट्रोल करना चाहते हैं और वो थोड़ा सा खा के आप, या जो लोग बहुत ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए एक ऐसा बिस्किट इन्वेंट किया था। इसके अलावा हमने थोड़ा काम किया था मिलेट्स के ऊपर, तो मिलेट्स की कुछ रेसिपी को पेटेंट कराया है जिनको खा के आप बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ज्यादा फिट फील करेंगे।
1: मतलब मैनेजमेंट के साथ साथ आप एक डाइटिशियन भी बन गए। अच्छा, रिसर्च वर्क आपके जो जिसके अगर हम बात करें।
0: जी जी, रिसर्च में जैसे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है, क्योंकि अभी आपने देखा बीते कुछ दिनों में बहुत तरह के होटल्स आए हैं, बुटीक होटल कॉन्सेप्ट आया है, ग्रीन होटल कॉन्सेप्ट आया है, होम स्टे कॉन्सेप्ट आया है, बहुत सारी नई नई टूरिज्म डेस्टिनेशन बनी है, तो हम इसमें क्या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, किस तरह से हम टूरिज्म को और ईजी कर सकते हैं,
1: उस पर आपने काम किया,
0: उस पर मैंने
1: शोध किया।
0: जी जी जी,
1: तो बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से।
0: थैंक यू।
1: ये बताइए इस कामयाबी के पीछे राज क्या है?
0: मैं अपनी फैमिली को बहुत, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं अपने फादर मदर को इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छी गाइडेंस दी और बहुत अच्छी परवरिश दी, हमेशा आगे आगे बढ़ने की सोच दी है मेरे फादर ने मुझे।
1: उसी तरह की भावना आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी?
0: जी, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मानता हूँ।
1: कोई कहता है कि मैंने R&D में काम करना है, कोई कहता है मैंने फ्रंट पे काम करना है, तो ये कैसे पता लगाते हैं? आप एक शेफ बनने के लिए क्या टेम्परामेंट होना चाहिए? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ बैठे ये कहूँ कि मुझे शेफ बनना है।

0: और मैंने पढ़ाई भी की, उसके बाद शेफ बनने के लिए या बाकी किसी फील्ड जाने के लिए किस तरह का टेम्परामेंट चाहिए?
1: जी, एक शेफ बनने के लिए आप बहुत इनोवेटिव होने चाहिए और किचन के लिए आपको बहुत पैशन, एक फूड प्रोडक्शन में अगर आपने शेफ बनना है आपके अंदर एक होना चाहिए, मुझे इनोवेशन करनी है। खाना नॉर्मल जैसे हम घर में बना लेते हैं इससे कहीं ऊपर है, मतलब जो कुकरी है, प्लस ये हमेशा मान के चलना है आपका माइंडसेट कैसा है किचन में। आपको टेम्परमेंट हमेशा बहुत अच्छा, दिल से, मन से, क्योंकि जैसा आपका मन है वैसा ही अन्न है।
0: जी बिल्कुल, तो वही भावना,
1: हाँ वही भावना आती है। तो आप इनोवेटिव होने चाहिए और आपके अंदर बहुत पैशन होना चाहिए।
0: पैशन विद पेशेंस,
1: लॉट ऑफ पेशेंस, कि टाइम लगता है हर एक चीज में, सीखने में भी टाइम लगता है और डिश को भी टाइम देना पड़ता है।
0: आपने तो बहुत करीब से देखा है, हर रोज देखते हैं, कितने साल हो गए हर किसी को शेफ बनते हुए।
1: जी जी जी।
0: तो
1: जी,
0: खाने में स्वाद किस तरह से आता है? अब राजमा अगर मैं बनाता हूँ, राजमा अगर आप बनाए एज ए शेफ, तो उसमें स्वाद शेफ वाला कैसे आएगा?
1: जी, जब हम किसी चीज में एक स्टैंडर्ड रेसिपी को फॉलो करते हैं और एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं,
0: जो टेक्निकली
1: है, कि हर एक चीज का एक लॉजिक है कि क्यों इतना ये पड़ा तो क्यों पड़ा और हमने किस तरह से किस प्रोसीजर में इसको बनाना है, तो डेफिनेटली, और हम अगर हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली खाना अच्छा ही बना।
0: बहुत मजा आया आपसे बातें करके, बहुत अच्छा लगा। अब इस प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है, जाने से पहले इस प्रोग्राम के सुनने वाले जो खास तौर से स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आप लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़िए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही वाइब्रेंट फील्ड है जिसमें बहुत अच्छा भविष्य, बहुत अच्छा करियर आपका वेट कर रहा है। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो वीजा है वर्ल्ड के लिए।
0: क्या बात है, पंच लाइन है आपकी ये।
1: इट्स अ पासपोर्ट फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड। वेर एवर यू फील देयर यू कैन वर्क एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। इट इज अ पीपल इंडस्ट्री वेर यू हैव टू जस्ट मैनेज द पीपल, यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज द पीपल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कांत, आप इस प्रोग्राम में आए, लक्ष्य प्रोग्राम में। आज आपने चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी और पूरी जो व्यवस्था है होटल की, मैनेजमेंट की, उसके बारे में आपने बताया। ये जो आपकी मेहनत है ये समाज के लिए काम आती है, उसे एक नई राह दिखाती है।
1: जी धन्यवाद, तो मुझे यहाँ पर बुलाया आपने और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और आई एम श्योर कि ये जितनी भी जानकारी होगी ये हमारे जनरेशन को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को जो कि अभी अपना करियर बना रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल होगा।
0: तो दोस्तों, ये तो था आज का लक्ष्य कार्यक्रम। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान रहे चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जय प्रकाश कांत। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता रमन भगत। अब आपका होस्ट एंड दोस्त आप सबको कहता है ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लक्ष्य।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
4: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए? तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 लाख रुपीज और नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपीज। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। तमाम श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं उनका पसंदीदा कार्यक्रम जो है फरमाइश आपकी। आपके खत इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और आपकी पसंद के गीत इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। और पहला खत हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल का। इसके अलावा रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, क करुणा।

महात्मा और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा। और जहां तक हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो चुका है, झावेंद्र कुमार वर्मा, यही इनका नाम है। ये सुनना चाहते हैं पाकीज़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया है इसमें गुलाम मोहम्मद ने।

फरमाइश हम तक पहुंची है सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। इसके अलावा चकला बाजार सामाना से पप्पूराज खुशदिल, संगीता जिंदल और हसमुख जिंदल। पूरा जिंदल परिवार गीत सुनना चाहता है, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें, ये इन्होंने लिख भेजा है। और मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर और रवनीत निशु भूपेंद्र सुनना चाहते हैं। सावन भादो फिल्म का गीत आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: फरमाइश आपके कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, कोठवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा राय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशीलपुरी, नीलमपुरी पीकेपुरी, कैलाशपुरी रामापुरी और आरएसपुरी। ये सुनना चाहते हैं

तिवर्ता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम, जयंती मरकाम, ममता मनीषा, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह सहेंद्री, बाई मंजू मानसी और मनमोहन सिंह

गिरजाबाई मरकाम। इसके अलावा गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से दूरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा। इसके अलावा आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। सुनना चाहते हैं मेला फिल्म का गीत, और ये गीत गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण और साधना ने। संगीत दिया है अनु मलिक ने।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज ये सुनना चाहते हैं गीत। इसके अलावा डोंगरगांव जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इसके अलावा चंडीगढ़ से रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, दिवांशु गुलाटी, दीपांशु गुलाटी और चित्रांशु गुलाटी सुनना चाहते हैं सिलसिला फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत है शिव हरि का।

फरमाइश आपकी कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं पराया धन फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत है आर डी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, बेबी आरजू जाजूरिया ने, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू और निहारिका वंश बत्ता ने, इसके अलावा पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक ढिंगरा।

फरमाइश आपके कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने

0: मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
1: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर्ड टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय हो गया है कार्यक्रम यादों की महफिल का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल शिवहरी का संगीत चांदनी फिल्म के इस गीत में। आज है अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन और यादों के महफिल कार्यक्रम में आज उन्हीं के फिल्मों के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनते हैं खुदा गवाह फिल्म से ये गीत।

खुदा गवाह फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी के फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: लम्हे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

0: चालबाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

गुलजार के शब्द आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। इलैयाराजा का संगीत सदमा फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

तोहफा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, इंदिवर के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना हिम्मत वाला फिल्म का गीत जिसमें आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, इंदिवर के बोल, बप्पी लाहिरी का

0: संगीत।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम्।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में नागिन, माफ कीजिएगा, नगीना फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: हवा हवाई।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कार्यक्रम विवरण में आपको बता दें हमारे केंद्र से आज कौन कौन से कार्यक्रम किस समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद 1:05 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार। 1:10 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार। एक बजकर 15 पर फिल्म संगीत का आनंद आप उठाएंगे। 2:15, 5:00, सायं 6:00 और 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे।

साए 5:05 पर एक बार फिर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत। 5:20 ये समय रहेगा लम्हे कार्यक्रम का। 5:30 पर सुनना ना भूलेगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारे केंद्र से प्रादेशिक हिंदी समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर। प्रादेशिक पंजाबी समाचार आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे 6:20 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे समाचार दर्शन। पंजाबी गीतों का आनंद आप उठाएंगे 6:40 पर। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार और 7:47 ये समय रहेगा पंजाबी गीत का।

कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का कस्टमाइज्ड प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:15 पर। 10:30 ये समय रहेगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का।

10:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर सांझ। तो ये थे कार्यक्रम जो आज आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। आपको बता दें कि विविध भारती से आज कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम हैं और उनका

कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे हेलो फरमाइश ठीक 4 बजे। 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे झलकी तमाशा।

9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो केंद्रित रहेगा अभिनेत्री वैजयंती माला पर। तो ये थे मुख्य कार्यक्रम जो विविध भारती के केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर, और अब आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में हरियाली तीज का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों की धर्म पत्नियों सहित प्रदेश की अनेक प्रमुख महिला हस्तियों ने शिरकत की और पारंपरिक झूलों व लोक नृत्य का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को तीज की बधाई दी और बेटियों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना और हर घर हर गृहिणी जैसी पहलों के जरिए राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वावलंबी बना रही है। मुख्यमंत्री ने तीज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा,
2: आदरणीय बहनों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि तीज आई और बो गई बीज, सावन की हरियाली हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश भी देती है। जिस तरह धरती एक बीज को सींच कर जीवन देती है, उसी तरह माँ अपने संस्कारों से परिवार और समाज के भविष्य को भी सींचती है। शायद यही कारण है कि तीज के उत्सव में हरियाली के साथ साथ ममता स्नेह और संस्कार के रंग भी इसमें दिखाई देते हैं।
1: श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीज प्रकृति से जुड़ा त्योहार है और इसका धार्मिक महत्व भी है।
2: माँ पार्वती के उस अद्भुत तप धैर्य और अटूट संकल्प की भी याद दिलाता है, जिसके बल पर उन्होंने भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त किया है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, समर्पण, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज तीज केवल ये सावन की खुशियों की हरियाली और खुशियों का पर्व ही नहीं, इसके पीछे माता पार्वती की तपस्या, उनका अटूट संकल्प की प्रेरणा गाथा भी है।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी में विश्व स्तर का आइकॉनिक टावर बनाने और बुनियादी सुविधाओं को अगले 3 महीनों में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित राज्य प्रगति पोर्टल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 1000 एकड़ में विकसित की जा रही

ग्लोबल सिटी का 80% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना में मॉल, थिएटर, आलीशान होटल और नमो भारत मेट्रो ट्रेन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही इसे द्वारका एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि नांगल चौधरी के एकीकृत बहुसाधन मॉल परिवहन केंद्र से आगामी 23 अगस्त से रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा हिसार में औद्योगिक निर्माण क्लस्टर के तहत हवाई अड्डे, कौशल विकास केंद्र और डिफेंस एयरोस्पेस जैसी ढांचागत सुविधाओं का काम जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश योजना 2 के तहत पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन में 100 कमरों का 5-तारा होटल बनाया जाएगा और पिंजौर की हवाई पट्टी का भी विस्तार किया जाएगा। साथ ही टिक्करताल और थापली में एडवेंचर पार्क विकसित करने की योजना तैयार की गई है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आज भिवानी रेलवे स्टेशन पर पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड, सीआईडी और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने रेलवे स्टेशन परिसर, पार्किंग क्षेत्र, पार्सल यार्ड और प्लेटफार्मों की गहनता से जांच की। इस दौरान यात्रियों के सामान और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। पुलिस अधिकारियों ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अपील की है कि या ट्रेन में कोई भी लावारिस सामान या संदिग्ध व्यक्ति नजर आने पर तुरंत पुलिस या रेलवे कर्मचारियों को सूचित करें। स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला जिले के सभी बस अड्डों को तिरंगे के रंगों और विशेष रोशनी से सजाया जा रहा है। अंबाला रोडवेज के महाप्रबंधक अश्विनी कुमार ने बताया कि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: किराना पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं, आपके लिए मोनिका ठाकुर लेकर हाजिर हो चुकी है फिल्म संगीत, और इस सफर में बहुत सी बातें आपसे होंगी और कुछ गीत आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके दिल के बेहद करीब रहने वाले हैं। एक दिल ही तो है जिस पर किसी का बस नहीं चलता, देखिए ना आज फिर ये दिल गुस्ताखी कर बैठा है और अपनी चाहत को आंखों के रास्ते बयां कर रहा है।

साधना सरगम की आवाज में दिल का क्या कसूर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, संगीत नदीम श्रवण का। जिससे चाहत होती है उसकी हर अदा सबसे खूबसूरत लगती है।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में, संगीत नदीम श्रवण का। उनके कदम हमारी जिंदगी में क्या पड़े, हवाएं ही नहीं हमारे दिल की महफिल भी सज उठी।

0: फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इस फिल्म का गीत आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे सुरीला सफर कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
2: कह जाती है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से संगीत हमारे कण कण में बसा हुआ है और देवी देवताओं के साथ भी उसे जोड़ा गया है। हमारे एक साथी एक किस्सा लिख भेजे हैं जो आज ही का एक किस्सा वो कह रहे हैं, छोटी गिलहरी की कहानी। लेकिन उससे पहले जब संगीत के कण कण में होने की बात हमारे साथियों ने कही तो ये गीत हमें याद आता है। बताइए कि इसमें आवाज किसकी है और फिल्म कौन सी है।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: चूरा करके वहां रख दिया तो फिर क्या, कुछ सेकंड्स में मुन्नी गिलहरी आई तो आई, साथ में बहुत सी गिलहरियां आ गई, नाश्ता पानी करने लगी। देखते ही देखते हमारे छत पर गिलहरी कबूतर चिड़ियों का मेला सा लग गया। छत पे खूब रौनक हो गई। गिलहरी और पक्षियों के साथ साथ मेरा मन भी खुश हो गया, जैसे पल भर में कई सारे दोस्त मिल गए। तो सच मानिए आज का दिन बन गया, मन आनंदित होकर खुशी से नाचने लगा। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति का संगीत और जीवन संगीत एक दूसरों का पूरक है। जी हाँ, प्रकृति की हर ध्वनि इंसानी जीवन के सुख दुख और धड़कनों के साथ मिलकर एक संपूर्ण राग बन जाती है। जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं, आशा का ज्वार है, हवाओं की सरसराहट मन की पुकार है, बिजली की कौंध ऊर्जा और क्षणभंगुरता का एहसास है, तो भोर का शांत मौन कोयल की कूक, पपीहे की तान चैतन्यता का तराना है, नई कलियों का खिलना जीवन का मुस्कुराना है। सृष्टि और जीवन दो ऐसे अनंत स्वर हैं जो विश्वव्यापी एक ही सितार पर बिना रुके एक साथ बज रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकृति के संगीत को मानव के संगीत के साथ या मानव के जीवन के साथ पिरोया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गाने जैसी इबारत तो अच्छी लगी, पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे सितार की सरगम पर जो रागिनी बज रही है तो मेरा मन डोल रहा है, जैसे मैं बूंदों के घुंघरू बांधकर कहीं दूर वन में पहाड़ी पर नृत्य कर रही हूँ। हाँ, मैंने सुना प्रकृति का गीत हर दिन हर क्षण। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमने की याद पुरानी है। 1982 में एक बिजनेस टूर में मसूरी जाने और घूमने का कार्यक्रम बना। मॉल रोड पर होटल में रात्रि निवास के बाद काफी मेंबर कैंपटी फॉल देखने निकला। एक साथ कई गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। जब झरने में नहाने वालों का कितना लुभावना दृश्य था वर्णन नहीं कर सकते। नहाते लोगों की फोटोग्राफी का शौक चरम पर था, इसमें महिलाओं की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। हमारे सभी साथियों ने भी नहाने का लुत्फ उठाया, फोटोग्राफी भी हुई और फिर दोपहर बाद जब सब होटल लौटे तो VCR पर फिल्म देखी गई सौतन। ये फिल्म कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, तब आज की तरह नहीं था कि फिल्में लोग VCR पर देख सकते थे तब, या दूरदर्शन के लाइव प्रसारण पर हफ्ते भर बाद फिल्म आती थी। वहीं हमारे एक साथी ने अपनी नैनीताल की ट्रिप याद की और कहा कि वहां की झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया और मगरमच्छ की बातें इन्हीं की हमने पढ़ी थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं अपने संगीत की। एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि मनाली में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखा, वहां जो पानी था उसका क्या कहना, इतना मीठा पानी तो कहीं का नहीं हो सकता है, ऐसा लगता था मानो गंगा मैया खुद आकर अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। तो ये

बहुत ही अच्छी तरह से जब प्रकृति के साथ आप जाते हैं और प्रकृति से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा महसूस तो होता ही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कन्याकुमारी के अंतिम छोर पर तीन समुद्रों का संगम, दुबई के समुद्र किनारे के होटल में रहकर समुद्री सुंदरता का अनुभव करना, अमेरिका में न्यूजर्सी का अंतिम छोर के समुद्र का आनंद, नायग्रा फॉल का सौंदर्य, थाईलैंड का समुद्र और चार धाम यात्रा में सबसे सुंदर उत्तराखंड का आध्यात्मिक वातावरण में आत्मिक शांति का अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपके साथ प्रकृति से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, लेकिन हम यहाँ आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको बताना है कि आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

दो दुनी चार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम की बात चली है और हम सब श्रोता संगीत के दीवाने हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों के दो बेजोड़ कलाकारों की याद आ रही है। एक तो दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सितार बजाते हुए सितार पर सही हाथ चले और देखने वालों को वास्तविक रूप में सितार बजा रहे हैं ऐसा दिखे, इसलिए कई माह तक सितार बजाना सीखा। दूसरे कलाकार हैं ऋषि कपूर, जो सरगम फिल्म में डफली बजाते हैं और इस फिल्म में डफली पर उनकी चलती हुई उंगलियां संगीत और लय के साथ जो चलती हैं वो देखते ही बनता है। दोनों कलाकारों की मेहनत का जवाब नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में ही सरगम है, इस धरा में संगीत हवाओं में गरजते बरसते बादलों में टपकती बूंदों में रिमझिम बारिशों की फुहारों में कल कल बहते झरने में और चिड़िया की चहचहाहट में हर प्रकार का सुकून भरा संगीत मन मोह लेता है। प्रकृति के संगीत सुनने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये समय समय सुनाई देने वाली धुन है। भोपाल में अच्छी बारिश होने लगी है। होशंगाबाद और भोपाल के बीच बुधनी के जंगलों में इस सीजन में खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली, बहते झरने और पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल, बरसते पानी में मनमोहक दृश्य इस इबारत को बयां कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संगीत और प्रकृति दोनों ही जीवन में संयम और शांति लाने में मदद करते हैं, तो आपको कब ऐसा अनुभव हुआ कि आपके जीवन में शांति लाने में प्रकृति का संगीत मदद कर रहा है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है, किसकी आवाज़ में है और क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और हमारे साथी कह रहे हैं कि इन दिनों कश्मीर के अनेकों शीतल जल श्रोताओं के दर्शन करने का, शीतल जल को छूने का और डुबकी लगाने का मौका मुझे और मेरी धर्मपत्नी को मिला है। भाई देखिए, जल की बहुत बातें हो गई कि अलग अलग जलाशयों में आप गए, पानी में पैर डाला, पानी की आवाज़ें सुनी, बूंदों की आवाज़ें सुनी, लेकिन क्या कभी घने जंगलों के बीच गए हैं? तो घने जंगलों का भी तो कुछ बताइए, कहीं ऐसी जगह पे गए हों जहां आपको जीव जंतु देखने मिले हों, शेर चीते बाघ, ऐसे कुछ दर्शन हुए हों, या आपको दर्शन हुए हों नाग देवता के, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और सावन बहुत सी जगहों पर आ गया। हमारे बहुत से साथियों ने बताया है कि अब गुजरात और दक्षिण भारत के बहुत से भागों में भी सावन अब आ गया है, तो इसकी शुभकामनाएं भी सब दे रहे हैं। और झूले की बात भी इस गीत में हुई, तो ये बताइए कि झूलों का किस तरह से आप आनंद लेते हैं, और अब आपको कार्यक्रम के अगले गीत का आनंद दिलवाते हैं, और आपको ये बताना है किस फिल्म का गीत है और किसकी आवाज में।

लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून देने वाली इबारत है, जब प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच मधुर संगीत गूंजने लगे तो कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, कुछ पलों के लिए तो सुकून मिल ही जाता है। प्रकृति और संगीत दोनों ही हमें गहरी शांति की ओर ले जाते हैं, तो आज के समय में बहुत कम लोगों को जो मिल पाती है ये शांति। सुंदर प्राकृतिक छटा के बीच मधुर संगीत की धुन न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी भाव कर देती है। बस ही मोर नाचने लगते हैं, चिड़िया चहकने लगती है, ऐसे में भला हमारा मन मयूर क्यों ना नाचेगा। ऐसे में याद आ रहा है इन्हें मेरी सूरत तेरी आंखें का, नाचे मन मोरा मगन तीगदा दीकी दीकी, जो गीत हमने सुनवा दिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे छत के ऊपर कभी कभी गिलहरी आती है तो आवाज लगाती है, उसकी आवाज सुनकर बचपन याद आ जाता है, मैं चूकता नहीं गिलहरी के वीडियो जरूर बनाता हूँ। एक और साथी कह रहे हैं कि पार्क में अचानक बहुत सारे कौवे बोलने लगे तो ध्यान गया कि बंदर महाशय उनके घोंसलों को कुछ कर रहे थे और कौवे ने चोंच मारकर उसे हटाने लगे, तो किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो बंदर वहां से दूर चला गया, लेकिन कौवे ने फिर भी उन्हें चोंच से मारते रहे और दोनों बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि कौओं का जो इस तरह से एक साथ होना इन्हें बहुत अच्छा लगा। आजकल लोगों के घूमने का स्वभाव में काफी बदलाव हुआ है, महानगरों कार्य व्यवस्थाओं से आजीज होकर आकर अक्सर प्रकृति के गोद में जंगल कैंप ट्रैकिंग इको विलेज को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर कॉरपोरेट जगत की मीटिंग में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारे एक साथी ने बताया कि सपरिवार हिमाचल की सैर की, जिसमें प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराया। शिमला में आसमान से गिरती बर्फ जो सड़क तक जमी थी और ऊपर से बारिश भी, वहीं मनाली की हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और तेज ठंडी हवाओं ने मन मोह लिया। हमारे एक और साथी कह रहे, कुछ दिन पहले उदास थी, आंखों में बस आंसू छलकने वाले थे कि रात की बची रोटी लेकर छत पर चले गए। रोज सुबह कबूतर और चिड़ियों को दाना डालते हैं, दूसरी बार गए अपना गम बांटने। सच में एक एक करके पानी पीते देखकर हमारे आंसू नहीं छलके बल्कि होंठों पर मुस्कान आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे कि बिहार के बहुत सारे जंगलों में मैं गई हूँ, घने जंगलों में भीतर जाने पर बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ क्योंकि बेहद उमस और गर्मी थी। जंगलों में जीव जंतुओं में मुझे छोटे छोटे ब्राउन वाले खरगोश दिखाई दिए और अजगर के बच्चे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं आजकल बर्लिन अपनी बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, घर से ही सुरीला सफर सुन रही हूँ। यहाँ मौसम बहुत सुहावना है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है इस समय, और यहाँ सुबह का 10:15 का समय हुआ है। और हम अपने साथियों से ये कहना चाहते हैं, जो घने जंगलों की बात हो रही थी, ऐसी कविता हमें पढ़ाई जाती थी, अगर आपको भी पढ़ने के लिए मिली हो, उस जगह का हम नाम नहीं बता रहे हैं।

और उस किसी एक खास जगह का नाम कहकर उसके घने जंगल, ऐसी वो कविता थी। अगर आपको याद आ रही हो तो हमें बताइए, और न याद आ रही हो तो हमें ये बताइए कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो कौन सी फिल्म का है, किसकी आवाज में।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

0: जरा मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मोहे लाले जुनर मोहे लाले जुनरिया
1: संघर्ष फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने जिस कविता का जिक्र किया था वो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता जिसको भी आपने बिल्कुल सही पहचाना।

नमस्ते दोस्तों, आज की त्रिवेणी में संकल्प की बातें होंगी। कई बार जब हम अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम किसी काम को करने या किसी काम को नहीं करने का संकल्प लेते हैं। इनमें से कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं और कुछ संकल्प आंशिक रूप से पूरे हो पाते हैं। हो सकता है हमारे संकल्प बहुत मामूली हों, लेकिन इतना तो तय है कि गंभीरता से इन्हें निभाने पर ये कोई न कोई उपहार हमें ज़रूर देते हैं। संकल्प हमारे जीवन को बदलने की कवायद रखते हैं, वे आंतरिक बदलाव लाते हैं, वे जीवन की नई शुरुआत करते हैं। चाहे हम अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हों या नया अपने भीतर कुछ विकसित करना चाहते हों, जब हम संकल्प ले लेते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस ओर हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुछ अच्छा करने का संकल्प तो लीजिए, फिर देखिए क्या होता है।

संकल्प का अर्थ ये नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा ही करना है। छोटी छोटी बातों का या छोटे छोटे कामों का संकल्प भी लिया जा सकता है, जैसे वजन कम करना, कर्ज चुकाना, पैसा बचाना, बेहतर नौकरी पाने की कोशिश करना, फिट रहना, पौष्टिक भोजन करना, बेहतर शिक्षा पाने की कोशिश करना, नशे की आदत को छोड़ना, तनाव को कम करना, पैदल घूमना, परिवार को समय देना, ऐसा कोई भी संकल्प हो सकता है। बेशक सभी संकल्प सफल हो जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके साथ एक विश्वास भी छिपा होता है कि हम अपनी बेहतरी के लिए कुछ सोच तो रहे हैं या कुछ कर तो रहे हैं। हर संकल्प अपने आप में अच्छा होता है क्योंकि इसके साथ सकारात्मक संभावनाएं जुड़ी होती हैं।

छोटे संकल्प अक्सर बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। हर दिन 10 रुपए की बचत करना या हर महीने एक पौधा लगाना, ये बातें हमारे जीवन में बहुत भारी बदलाव तो नहीं ला पाएगी, लेकिन सफलता की ओर ये पहला कदम तो जरूर होगा। संकल्प अगर वास्तविक हो तो उनके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जबरदस्ती किसी काम के पीछे पड़ने से अच्छा है हम सहज और सरल संकल्प पहले लें। आज के व्यस्त दौर में किसी काम का संकल्प लेना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। ये संकल्प हमारी उन ख्वाहिशों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम पूरा तो करना चाहते हैं, पर समय की कमी और समर्पण के अभाव में अनदेखा कर देते हैं। सकारात्मक संकल्प मानसिक संतुष्टि में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए हो सके तो किसी सकारात्मक बदलाव का संकल्प लीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया।

0: गया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
1: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
2: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
2: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी
0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बारेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
3: ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
4: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
5: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600

0: प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
1: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पे FIR करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला संगीत नृत्य रंगमंच लोक और जनजातीय कला कठपुतली कला पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
3: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
4: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग

0: घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर्ड टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। सदाबहार नकमी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में वैजंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इस कार्यक्रम में आज वैजंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: क्या होना, क्यों सताते हो? होगा होगा।
1: संगम फिल्म का ये गीत मुकेश और साथी की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल तर्ज शंकर जयकिशन की।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का ये गीत, हसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं।

है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत, फिल्म मधुमती।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है. आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन. सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार.

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है
2: भाई? हाल तो ठीक है।
1: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप लगातार बोल रही थी
2: जी।
1: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी पढ़ रही थी। तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं?
2: वो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि देखिए काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर लिए जाए जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे तो अच्छा लगता है। शौक हमारे ये अच्छे रहते हैं।
1: हाँ, और ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए
2: जी।
1: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है वहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर की ओर उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है आपको और कहीं ना कहीं तनाव महसूस होता है। तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं और अभी तो बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारी जगहों पे 12-12, 14-14 घंटे काम होते हैं। तो इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए, जहां पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें।
2: बिल्कुल। और जैसे कि ये कह सकते हैं इन दिनों तो, क्योंकि ज्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, कंप्यूटर

0: देख रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं, कुछ भी, अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर और फोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी. तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं. तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती है, भावनाएं अच्छी आती
1: है. और कई नकारात्मक बातें जब होती हैं कहीं इर्द गिर्द तो वो आप भूल जाते हैं
0: जी.
1: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई ना कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए. तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना है जो एक सेगमेंट है उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं. कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें, पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है. तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता.
0: बिल्कुल. और इसके साथ ही आज हम लोग कुछ विषय और भी लिए आए हैं उनके लिए. जैसे आज विश्व अंगदान दिवस है तो इस पर बातें होंगी. और कहानी पद्मश्री की में आज हम लेने वाले हैं पैट्रिशिया मुखीम की बातें, समाज सेवा से वो जुड़ी हैं.
1: और कई बार ये तो शौक की बातें हमने की
0: जी,
1: जहां पर आप खुश हो लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दुखद जगह दुखद घटनाएं होती हैं, जहां जाते हैं वहां पर भी देखा है लोग कि कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया जरी वाली साड़ी पहन के तैयार होकर, लिपस्टिक लगाकर, ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहां पहुंच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते करना और हाथ मिलाना. लेकिन वहां का एक शिष्टाचार होता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है
0: जी.
1: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना. तो
0: अब दुख में गए हैं तो उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं. और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते, क्या करना चाहिए हमें.
1: बिल्कुल. तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर. अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना. ये

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी, और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन
1: मनाया जाता है। अब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है। अब तो अगर आपके एक अंग दान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है, तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना है, तो उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का ईश्वर की पूजा, पुण्य की तरह पुण्य से जुड़ जाता है, तो इसलिए अंग दान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, न ही ज्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं, जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंखें, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए।
0: हाँ, और ये अंगदान के लिए अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्म होता है वो आप भर देते हैं, और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें, तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वा भाई को, उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफी लंबे समय तक, और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो हमारा साइंस है किस तरह से तरक्की करा, और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थी लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशंस को बहुत बड़ा माना जाता था वो तो आजकल बिना चीरफाड़ के लेजर के जरिए हो जाते हैं, और अंगदान जैसी जो चीजें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और जरूरी नहीं है कि आप एक डोनर लिस्ट होती है और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए, जिसका जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं, और उसके उनके अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है उसे देखकर,
1: क्षमता उनकी कितनी, शारीरिक क्षमता कितनी है
0: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है। और जो भी कोई अंगदान करता है और अंग मिलता है तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब एक उनके लिए अंग ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
1: और एक चीज और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों के लिए पहले से बताना पड़ता है जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे आंख, नेत्रदान। तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो फॉर्म भर लिया जाता है, और आंखों के दान के लिए कुछ समय सीमा होती है, समय उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है, करना पड़ता है, तो ये बात हो गई। और किडनी और ये सब चीजें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं, लेकिन हाँ इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम ना चलाएं या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें, डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी, वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा, तो

0: ब्लड डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें
1: जी
0: कोई भी खतरा नहीं होता है। बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहां पे आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब एक गीत सुनते हैं।

0: नेहा
1: जी,
0: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रही, किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
1: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता, सुधी श्रोता कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक कहानी उन्होंने बता रही कि उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी, जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा नहीं चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचाकर वो इस दुनिया से गए।
0: क्या बात है, कितनी

0: सजगता की बात है ये, इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है।
1: जी
0: कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो, लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई
1: जी
0: बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो नज़दीकी लोग हैं और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाए,
1: जी
0: कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते, तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। हाँ, सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीजें बताते होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो इससे क्या होता है, वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीजें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज्यादा उसमें गहरा जाते हैं। तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं,
1: हाँ
0: भले ही आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हो, लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है।
1: जी
0: अब ये जरूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना, चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है, और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ, मतलब बड़े शहरों में कहें, महानगरों में आजकल ये परंपरा हो गई कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये, मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं,
1: जी
0: मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है,
1: जी
0: चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो लोग वहाँ भी जाकर खाने खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों
1: जी
0: को, हमने देखा। तो ये ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं और बेचारे खुद नहीं खाते हैं, आपके खाने की व्यवस्था किए, तो
1: जी
0: वहां पर खड़े होकर मीन मेक निकालना या अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना, ये भी ठीक नहीं लगता है।
1: और कई बार ये भी बताने लगते कि भाई वो मेरा जो फलाना दोस्त था, वो जो एक रिश्तेदार था, वो भी ऐसे ही हुआ, उसका ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर विस्तार में उसका बताने लगते। कई बार जो शोक संतप्त परिवार है उसी के सदस्य को वो बताने लगते, उन्हें भी कई लोगों से मिलना होता है क्योंकि सब उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और आप उनके दुख को बांटने गए, उनको बढ़ाने तो गए नहीं है, तो ये करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों की तबीयत खराब रहती है, उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ एक खास डाइट उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहां जाके हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ा दें। आप
0: बिल्कुल
1: कहेंगे मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो ये चाहिए, या मुझे वो नहीं चाहिए, या मुझे तो अभी 1 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो इस तरह से अगर जब आप पहुंचते हैं तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पर फिर आप फोन के जरिए भी उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं, और वो यकीन मानिए वो बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि इतने लोग आते हैं, उस बीच में अगर आप बाद में भी जाते हैं तो ये ठीक लगता है, बजाय कि आप वहां जाकर अपनी जरूरतों की डिमांड करें कि हमको ऐसे ही रहना या यहाँ ही बैठना है, तो ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और किसी भी शोकाकुल व्यक्ति के सामने बैठकर ये कहते रहना कि उन्होंने जिस अपने को खोया है, उसे क्या क्या काम बाकी रह गए थे, जैसे परिवार में किसी का विवाह, जन्म जैसी बातों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इसकी शादी देख लेते या नाती पोता देख लेते तो फिर जाते, थोड़ा और रुक जाते, ये कहना भी शोक को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा जरूर देता है। अगर आप ऐसा कहने से पहले ध्यान से सोचें तो आपको ये भान होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है, पूरा नहीं कर पाता है। और मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं होती है ना, मृत्यु तो लिखा होता है, जिस दिन जिसको जाना है वो चला ही जाता है। तो ऐसे में ये सब कहना कि अरे क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, पैसे भी ज्यादा छोड़ के नहीं गए, तो ये जो सुन रहा है ना उसके ऊपर और दर्द का पहाड़ आप तोड़ते हैं,
1: उनको और परेशानियां आप बता रहे हैं, उनकी उनकी क्या क्या परेशानियां आप उन्हें और बता रहे हैं कि क्या क्या जीवन में होना है। और कई बार ऐसा होता है आप गए हैं शोक में शामिल होने के लिए, अपना फोन आप देख रहे हैं या फोन आ रहा है आपको, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप बताने लगते हैं, तो ज्यादा मत बोलें, बेवजह ना बोलें, जितनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं कहानियां हैं वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता नहीं, यही करिए,

0: ये कीजिए, तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं वो तो जरूर बताइए, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप रहने दीजिए. आप खुद सोचिए कि आप अगर उनकी जगह होंगे तो कौन कौन सा व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, तो उसके बाद आप खुद वो व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ.
1: उस समय तो बस शांत भाव से बैठ जाना ही, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, सिर पर हाथ रख देना ही बहुत होता है. असल में उस समय शब्द कुछ काम नहीं करते हैं. जब इंसान दुख में होता है तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस आपके बर्ताव की अहमियत रहती है कि आप हाथ पकड़ के कह दें कि चलो हम हैं आपके साथ, कोई ज़रूरत हो तो बताना, बस इतना ही काफ़ी होता है. और फिलहाल हमें अब चाहिए कि एक गाना सुनवा दें अपने श्रोताओं को.

0: ये आकाशदीप फिल्म का गाना था, और इस गाने से पहले नेहा हम लोग बात कर रहे थे कि शोक के मौके पर जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो किस तरह से शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि किसी के यहाँ शोक में जाना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव विषय है और तमाम सवालों से बचना चाहिए। घर में बच्चे या बूढ़े हों तो उनके खाने पीने के लिए ज़रूर कुछ लेते जाएँ, बाकी बातों के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उस दिन बस मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल, और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी। जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, चुप चुप करके बहुत से लोगों को मैंने, मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के लिए उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है, तो ऐसे हंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो संवेदना है उसे आप दिखाइए शांति से, उनके पास अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते कि

0: परिवार में निकट रिश्तेदारों के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है। जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती हूँ, लेकिन वहां जाने पर देखती हूँ कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं। शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं। ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो वहां शामिल हुई हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिश्तेदारी या आप अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं जरूर शामिल होता हूं शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूं या ना हो सकूं किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में जरूर पहुंचता हूं।
0: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हो तो जरूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते शादी ब्याह में तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें जरूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके मतलब ध्यान रखा, किनसे बातें हुई, ये सारी बातें याद रह जाती मन में।
1: अब नेहा ये बातें हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इन बातों पर, और एक ब्रेक के बाद हम वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें करेंगे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सखी सहेली और आज ममता जी हम कहानी पद्मश्री की ये सुनाते हैं और इसमें उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशिया मुकीम की जो समाज सेवा से जुड़ी हैं। मेघालय की पत्रकार, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ उस समय आवाज उठाई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसलिए पैट्रिशिया मुकीम की पहचान एक ऐसी सशक्त महिला के तौर पर होती है जिन्होंने 1970 से 1990 के दौरान मेघालय में फैली हिंसा और उग्रवाद का निडरता से

0: हमला किया।
1: और ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब मेघालय में उग्रवाद अपने चरम पर था। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती, लोग घरों में बंद हो जाते, पूरे समाज में डर फैला हुआ था। और तो और स्कूल बंद, व्यापार ठप और आम जनता कुछ कहने से भी डरती। हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकी जैसी घटनाएं तो आम हो गई थी। पैट्रिशिया उन दिनों एक आम युवतियों के जैसे पढ़ना पसंद करती थी। उपन्यास में वो खोई रहती थी और एक खुशहाल भविष्य का सपना देखा करती, जबकि माहौल वैसा नहीं था।
0: और आखिरकार पैट्रिशिया ने निर्णय लिया कि कुछ और अपने साथ कुछ 20-25 लोगों को वो लेकर सड़कों पर उन्होंने निकलना शुरू किया। ये डर के खिलाफ लड़ने की मुहिम थी क्योंकि कोई निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये लोग इससे आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया। और बाद में वर्ष 1996 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिलोंग वी केयर। और इस संगठन में वो लोगों को जागरूक करने का काम करने लगी। दुकानदारों से वो कहा करती कि शाम के समय भी दुकानें खुली रखें, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती और जिंदगी जीने की बातें करती उनसे।
1: और उन्होंने शांति मार्च निकाले, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और एक ही संदेश दिया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनकी इतनी कोशिशों के बाद लोग भी जुड़ने लगे क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी थी कैद रहते हुए। पैट्रिशिया मुखिम के शांति मार्च में बच्चों से लेकर बड़ों तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नारे लगाए कि हमें तो उग्रवाद नहीं चाहिए। और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये सभी चाहते थे, लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह कहने का साहस पहले किसी में नहीं था।
0: बिल्कुल, और ये हुआ क्योंकि इस मामले में एक घटना ऐसी हुई जिसने मुख्य भूमिका निभाई। उग्रवादियों ने एक टेलीविजन की दुकान में जाकर विवाद किया और कुछ निर्दोषों को मार दिया। और इसके बाद पैट्रिशिया के संगठन ने एक सभा बुलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए। सभी उग्रवाद से परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्थिक विकास को ठप्प करने में भी उग्रवादियों का बड़ा हाथ था। रोजगार, व्यवसाय, स्कूल, जीवन सब कुछ प्रभावित था। आखिरकार लोगों ने डर के खिलाफ कदम उठाया और इस आंदोलन में सरकार का भी उन्हें साथ मिला। तत्कालीन गृह मंत्री रॉबर्ट गार्नेट लिंगडो ने अपना सहयोग उन्हें दिया और उग्रवादियों की आर्थिक मदद किस तरह से रोकी जाए इसके लिए एक नियम बनाया। और जो भी व्यक्ति उग्रवादियों को फिरौती देता तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती, तो लोगों ने फिरौती देना बंद कर दिया और उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। तो इसका असर यह हुआ कि वो आत्मसमर्पण करने लगे और धीरे धीरे पैट्रिशिया मुखिम की मुहिम को जीत हासिल होने लगी और शांति लौटने लगी।
1: 2015 में अदालत ने निर्देश दिया कि उग्रवादियों के बंद के आह्वान प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित न किया जाए। इससे भी उनकी गतिविधियां प्रभावित हुई, उग्रवाद की घटनाएं कम से कम होने लगी। पैट्रिशिया मुखिम केवल यही नहीं रुकी बल्कि वो समाज के सुधार को लेकर बहुत सारे अन्य कार्य भी करती रही, जैसे कि उन्होंने पीपल्स रैली अगेंस्ट करप्शन के जरिए जमीन से जुड़े विवाद का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया फिर भी वो घबराई नहीं, जबकि उस समय वो अकेली महिला थी जिन्हें 45 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था।
0: जी, और पैट्रिशिया मुखिम ने ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। मेघालय इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में भी राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। द शिलोंग टाइम्स की संपादक रह चुकी पैट्रिशिया मुखिम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: सामाजिक संघर्षों और कार्यों में पूरी तरह समर्पित पैट्रिशिया मुखिम निजी जीवन में अपने बीते को खोने के गहरे दर्द से जूझती, अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझती रही। आज भी समाज के लिए सक्रिय हैं। तकरीबन 17 बरस की उम्र में वो आज भी योग करती हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती हैं, आदिवासी अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार अपनी बुलंद आवाज आज भी उठाती हैं। उनका मानना है कि अगर बदलाव लाना है तो एकजुट होना होगा क्योंकि जब सब साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है।
0: और तकरीबन 70 वर्ष की पैट्रिशिया मुखिम हमें सिखाती है कि कभी कभी एक निडर आवाज भी लोगों को एकजुट करने में सहायता करती है। किसी एक का साहस हो तो सभी लोगों में वो साहस हो जाता है, उन्हें देखकर सब साहस करते हैं और समाज डर, हिंसा और अन्याय से आगे बढ़कर शांति और लोकतंत्र कायम कर सकता है।
1: तो इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक पैट्रिशिया का हाथ आगे बढ़ा और कारवां बढ़ता गया और उन्होंने विजय पाई, पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया।
0: जी,
1: अब गाना सुनते हैं ये।

0: हाँ तो नेहा, हमने शुरुआत में बताया था कि श्रोताओं से हमने ये शौक के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत सारे श्रोता तो अभी लिख नहीं रहे. हमें लगता है हमारे श्रोताओं को विविध भारती सुनने के अलावा और कोई शौक नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि शौक तो बहुत से थे, अब सिर्फ विविध भारती प्रोग्राम के ही सुन पा रहे हैं. उनमें से कोई प्रोग्राम मिस कर जाता हूँ. अब से 8 बजे तक अनवरत मोबाइल पर VVS के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ. ऑफिस का काम भी चलता रहेगा. भाई, विविध भारती सुनने का शौक तो सबसे उम्दा शौक है. इस शौक को आप कायम रखिए, लेकिन इसके अलावा जब भी वक्त मिले इसके साथ साथ और भी शौक कर सकते हैं. विविध भारती सुनते हुए आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं,
1: क्या कुछ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. रेडियो के साथ सब चीजें की जा सकती है. ऐसा ही तो मतलब हमने शुरुआत से ही ऐसे ही तो सब बड़े हुए हम सब.
0: सही बात है.
1: सुनते सुनते सारे

0: काम करते करते
1: और रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो कल्पनाशीलता का विस्तार भी होता है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, विविध भारती सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दृश्य खींच रहे होते हैं उस समय,
0: और एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है। एक समय के बाद में हमें सब सुनाई दे रहा होता है, फिर हम अपने काम में भी डूबे रहते हैं, लेकिन किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो पता चलता है कि अरे हम सुन रहे थे। ऐसा लगता है ना कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं तो बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहता है। हमारे एक साथी ने जरूर लिखा है कि उन्हें बागवानी का बहुत शौक है, इसके लिए मैं शनिवार रविवार को जरूर समय निकालती हूँ, पेड़ पौधों की गुड़ाई करना, कटाई छटाई करना या नए पौधे लगाना, और ये छुट्टी वाले दिन जरूर करती हूँ। मुझे गमलों में पेंटिंग करना, तरह तरह से क्यारियों को सजाना भी बहुत पसंद है, इसके लिए समय निकल ही जाता है, और रेडियो सुनना और विविध भारती पेज पर कमेंट करने के लिए काम से थोड़ा समय चुरा ही लेती हूँ। तो कितनी अच्छी तरह से वो अपना पूरा समय मैनेज कर रही है ना।
1: और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बातें लिखी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है, रेडियो सुनते सुनते हम खाना बना लिया करते हैं। और विविध भारती के शौक के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमें तो विविध भारती सुनने का बहुत शौक है। और एक श्रोता ने कुछ अलग सी बात लिखी है, वो ये लिख रहे हैं कि आपने शोक के बारे में बात की थी और गाना सुनवाया था जुल्मे संग आंख लड़ी रे, तो क्या गाना सुना दिया जुल्मे संग आंख लड़ी। 1% चैनल पर आने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख दर्द में जाते हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनते होंगे, अपने घर की पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते मगर दूसरों की उस दिन जन्मदिन जरूर मनाते हैं, एक प्रतिष्ठित चैनल पर होता है जो गाना सुनाते हैं। तो इनके लिए शायद ये विविध भारती के लिए इनकी बात है, तो इनको स्पष्ट कर दें कि आज कोई शोक का दिन नहीं है, ये तो हम एक शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सखी सहेली ऐसा प्रोग्राम है नेहा जिसमें हम हर मुद्दे पर बात करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जहां महिलाओं के आगे बढ़ने की बात हो, जहां उनके शिक्षा की बात होती है, उनकी कामयाबी की बात होती है, उनके करियर की बात होती है, और तमाम मुद्दे हैं, खेल है, पढ़ाई लिखाई, कुकिंग से लेकर हर मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो इसी के तहत ये मुद्दा उठाया, तो जहाँ पर शिष्टाचार की बात है
0: जी, तो लेकिन ममता जी एक बात तो ये भी हम कहना चाहेंगे इनसे कि शायद ये बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जुल्मी संग आंख लड़ी गीत से तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: और जब हमने शोक से संबंधित बातें की तो उसके अनुरूप ही गीत हमने सुनवाया, जिसे हमारे सभी श्रोताओं ने सुना है और उन्हें पता है कि असलियत क्या है। और जिन्होंने नहीं सुना, हम तो कहेंगे इन श्रोता को कि 3 बजे रात में भी इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है, तो वो जरूर उसे सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, है ना।
1: और अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसके लिए मेरा रविवार फिक्स होता है, बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि धैर्य का गुण हमने सीखा। और एक श्रोता ने और लिखा है कि मुझे बागवानी का शौक है, मतलब बागवानी का शौक बहुत सारे लोगों
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा कि हमको तो खाली समय में एडिटिंग का शौक है, मैं हमेशा 4 से 5 घंटे एडिटिंग करता हूँ, तो ये भी एक अच्छा शौक है, कुछ उससे कुछ उन्हें मिल रहा होगा, कुछ चीजें सीख रहे होंगे, क्योंकि एडिटिंग करना भी एक अपने आप में गुण है और वो शौक के साथ साथ कभी कभी काम में भी बदल जाता है। अगर काम ही उनका शौक है तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, कुछ लोगों को दिन भर मोबाइल देखने का भी शौक होता है
0: जी, तो इस शौक से मुक्ति पाना जरूरी है,
1: बचें, क्योंकि ये शौक बहुत खतरनाक होता है, इससे आपका वक्त बहुत सारा खा जाता है मोबाइल, और आप अपने जो शौक है उन्हें जान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है नेहा कि आपके शौक क्या है उन्हें पहचानिए, खासतौर से छोटे बच्चों के भीतर कई और हम बहुत सारे हुनर देखते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो वो जान नहीं पाते कि उनके शौक क्या है और विपरीत दिशा में अपने आगे बढ़ते हैं, करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ता है।
0: और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ बनना चाहते हैं और उनके बहुत सारे शौक होते हैं जो किसी वजह से पूरे नहीं हुए, तो उन्हें लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये सिखाऊंगी, तो वो भी एक है, उसकी बजाय माता पिता को चाहिए कि खुद ही अपने शौक पूरे कर लें और बच्चों को उनके शौक पूरे करने दें, है ना।
1: और शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है। कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो दफ्तर जाने के साथ हमें टाइम नहीं मिलता है, हम ये नहीं कर पाते, तो भाई उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, आप सामंजस्य बिठा सकते हैं, और नहीं होता तो जब आप रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, वो सारे शौक जो अधूरे रह गए उन्हें पूरे कर लेने चाहिए।
0: एक बड़ी मजेदार बात इससे हमें याद आई कि संगीत से जुड़े हुए हमारी एक पहचान के हैं, वो अभी भी एग्जाम्स देते हैं संगीत के, तो वो उनकी उम्र वो 60 से सीनियर सिटीजन है, तो वो जब एग्जाम देने जा रही थी एक बार तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया और

0: कि अरे बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं जा सकते ऊपर एग्जाम देने, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे. तो फिर उन्होंने अपना जो वो एग्जामिनेशन हॉल का टिकट होता है वो दिखाया, कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट ही हूँ. तब वो बड़े मजे से वो बात बताए थे कि मुझे रोक दिया, मैं क्या करूँ. और बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को और हम सभी को ये बातें सुनाई.
1: और एक बात और बताएं नेहा, आपको जो जानी मानी गायिका है छाया गांगुली, विविध भारती में जिनका सानिध्य हमें मिला, हम गौरव का एहसास करते हैं जब छाया जी का नाम लेते हैं, और उनकी जो गजल है रात भर आपकी याद आती रहे, गमन फिल्म की गजल, जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था. छाया जी बताती हैं कि वो रिटायरमेंट के कई साल बाद उर्दू सीखना शुरू किया. उनको उर्दू सीखने का शौक था, तलफ्फुज का बड़ा ख्याल रखती है वो कि कहीं कोई उच्चारण गलत ना हो. हाँ. तो इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया, और एक साल नहीं कई साल उन्होंने उर्दू सीखा. और जब भी कहीं किसी शब्द पर अटकती तो वो फोन करके पूछती थी हम सबसे. तो ये बड़ी बात है. हमने उनका नाम इसलिए यहाँ पर लिया कि वो एक मार्गदर्शक है हम सबके लिए, लेकिन वो एक उम्र के इस खास जगह पर आकर सीख रही है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. और गाना सुनवाने के लिए भी
0: कोई
1: सुख
2: जब सदा संग रहे ना कोई.

0: नेहा, ये बरसात का मौसम जितना लुभाता है उतना ही सताता भी है, क्योंकि बारिश के मौसम में अलग अलग तरह के कीड़े आसपास होते हैं, नमी बहुत ज़्यादा होती है और उसके कारण पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किसकी किस तरह के कीड़े ने अपनी जगह बना ली है, और छोटे छोटे बारीक मच्छर जैसे कुछ कीड़े होते हैं। आप नॉर्मल कहीं बैठे हों जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं भी हैं और पता चलता है, आप दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एकदम कण एक कण की तरह होते हैं और काट के चले जाते हैं, बहुत देर तक बदन खुजलाता रहता है।
1: बिल्कुल, और पानी भी भर जाता है बरसात के मौसम में कई जगह, तो कई हल्के जहरीले कीड़े भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और उनके काटने की संभावना भी बढ़ती है। अगर इस तरह के कोई कीड़े आपको काटते हैं जहाँ भी, मतलब अगर सूजन दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना तो उचित है सबसे ज्यादा। और जहाँ कीड़े ने काटा हो वहाँ पर बार बार आप खुजलाएं नहीं, कि खुजली तो होती है पर खुजलाएं नहीं, या तेल चूना या कोई भी दवाई ऐसी हम लगा लेते हैं जो सामने दिखती है, कभी कभी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन होता है, लगा लेते हैं। तो ये सब ना करके पानी और एंटीसेप्टिक साबुन से पहले साफ कर लीजिए।

0: और अगर काटने के बाद आपको सूजन आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, तेज जलन हो रही है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ भी होती है, ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो डॉक्टर को फोन करके आप सलाह ले सकते हैं बाकी मामलों में।
1: बिल्कुल सही कह रही। हालांकि कई बार कुछ छोटे कीड़ों के काटने पर लालिमा जैसी होती है, हल्की जलन भी महसूस होती है, तो इसे पानी से साफ करें और कुछ देर खुजलाने से बचने पर भी वो ठीक हो जाता है। उसे खुजलाएं नहीं बल्कि उसको रब करें, हल्के हाथ से रब करें तो भी आराम मिलता है। ऐसे में बेकिंग सोडा के पानी से धोना ठीक रहता है या फिर डिटॉल वगैरह उस पर लगा देना धोने के बाद ठीक रहता है। और नीम का तेल लगाने की सलाह दी जाती है। हल्की सूजन के लिए बर्फ की सिकाई भी कारगर होती है, लेकिन इस बात के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि कीड़े काटते हैं आपको पता नहीं चलता है कि वो कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है।
0: जी, और बारिश में कीड़ों से बचाव के लिए आप नीम के तेल या कपूर जैसे सुगंधित चीजों को घर के किनारों में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े ही कम पनपेंगे। या घर की साफ सफाई करते रहने से भी, नमी को दूर करते रहने से भी कीड़े नहीं बसेंगे। बिस्तर को झाड़ के सोइए, जो कपड़े हमने कहीं लगा दिए या अलमारी में रखें तो भी एक बार झाड़ के पहने, जूते चप्पल भी झाड़ कर पहनिए, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें छुपे होते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि अगर कहीं काटता है, कीड़ा वगैरह काटता है, तो उस जगह को खुजलाए नहीं। अगर अगर आपको कहीं डंक वगैरह अगर दिखता है तो भी आप उसे बिल्कुल भी ना दिखलाएं, मतलब कुछ करें ना उसे।
1: बिल्कुल। और अब सुनिए गाना, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हां, अपने देश की पावन भूमि को हम नमन करते हैं। 15 अगस्त 2026 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमने देश प्रेम पर कुछ बातचीत की और देश प्रेम की कुछ गीत आपके लिए पेश किए हैं अपने श्रोताओं की पसंद पर। तो चलिए सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हमारे पहले कॉलर कौन है, सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
1: मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल चिरोली बोल रहा हूँ।
0: संतोष बोल रहे हैं, बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ मैडम मैं।
0: अच्छा,
1: दो बच्चे हारे मैं और कल्याणी है, दो बच्चे मेरे और 3 एकड़ जमीन है। 10 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं भी।
0: अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी?
1: वो क्या है कि आप पिताजी से काम नहीं बनता था तो बोले कि आप क्या करोगे करके लग गया हम फिर।
0: अच्छा चलो,
1: रेडियो बचपन से सुन रहे हैं हम।
0: बिल्कुल सुन रहे होंगे, तभी तो हमें आपने फोन किया अपने खेती बाड़ी से समय निकाल के।
1: जी जी, बहुत साल बाद फोन लगा मेरा, 6 साल हो गए।
0: अरे क्या बात है।
1: जी जी, ये मेरी पत्नी से बात कर लीजिए।
0: कराइए।
2: हेलो मैडम।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
2: मीरा भाई है मेरा नाम।
0: अरे मीरा भाई, क्या बात है। हम तो भजन बजाते हैं संत मीरा भाई के, तब बहुत बोलते हैं कि संत मीरा भाई के ये भजन सुनिए। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर संभालती हैं?
2: हाँ, घर संभालते हैं, खेती में भी काम करते।
0: अच्छा, बराबर हाथ बटाती हैं अपने पति देव का, है ना?
2: हाँ।
0: अच्छा तो बताइए, महिला किसान होने का एक अनुभव क्या है? कितना काम करती है महिला किसान?
2: महिला किसान का अनुभव यह है कि भाई भाई आदमी दोनों साथ में अच्छा खेती में काम करो तो धड़किया मजदूर कम लगते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, घर का काम भी करती है और खेती बाड़ी भी करती है ना, तो पशुधन भी होगा आपके पास।
2: हाँ, एक भैंस है, दो बैल है,
0: तो उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती होगी आपको।
2: हाँ, करें ने, भैंसी दूते चार पीते।
0: सही कहा आपने, रोज वही जीवन, कितना मुश्किल होता है, लेकिन इतने हंसकर आप अपने जीवन को जला रही हैं, ये बड़ी बात है ना।
2: लड़का 11वीं में जाता, लड़की 10वीं में जाती है, तो फिर काम तो करना पड़ता है ना।
0: बिल्कुल करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना है आपको, उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना।
2: नहीं नहीं, पढ़ा रहे बच्चे को तो अभी।
0: चलिए बताइए, आप दोनों मिलकर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: हाँ मैडम, नगीना पिक्चर गाना सुना दीजिए, बाबला मेहता की आवाज है, श्रीदेव और ऋषि कपूर है कलाकार, उसमें भजन भी गाते हैं हम, नेपाली में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं हम, तो पुराना क्लासिकल भजन अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, तो एक भजन सुना दीजिए, फिर आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम।
1: जी जी, भस्मी लगाए तन पर कहते हैं जिनको शंकर, पीते है भंग के प्याले, कहते हैं डमरू वाले।
0: बहुत सुंदर गाया, दिल में तुझे बिठाकर, है ना। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ मैम। आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप?
1: मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा।
0: अरे वाह, कैसा है आपका शहर बताइए इसके बारे में हमें। हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या विशेषता है।
1: त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है। तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है।
0: हाँ।
1: और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आती है यहाँ, और त्रिपुरेश्वरी टेम्पल भी है।
0: अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना?
1: जी बहुत सारा।
0: तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता, जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए, पहनने के लिए, बता सकती हैं आप?
1: जी यहाँ खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला। जी
0: अरे वाह, चलिए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: तो मुझे गाना सुना दीजिए लता दीदी की आवाज में। जुर्माना फिल्म है और गाने का बोल है साबुन के झूले पड़े।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए, वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए।
1: जी मैडम, यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है, आज इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में।
0: हाँ, ठंड तेज हो जाती है ना?
1: हाँ, ठंड तेज हो जाती है तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त।
0: तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे, वो व्यंजन क्या क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है, थोड़ा सा एक व्यंजन के बारे में बताइए ना।
1: वो है ना वाजवान है।
0: वाजवान बनता है ना?
1: हाँ वाजवान, उसमें तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो।
0: अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है।
1: हाँ, उसमें इलायची भी डालते हैं, वो है ना मतलब रोंग, कश्मीरी रोंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं।
0: तो अभी आप कावा पीते हैं?
1: कभी कभी पीते हैं, तो वही तफ वगैरह बुखार उस पे भी हम वो यूज करते हैं, तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं।
0: अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका?
1: रूटीन का खाना है चावल 2 टाइम, और दिन में 2 चाय हम बनाते हैं, लेप्टन चाय और वो है ना नमक चाय।
0: अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं?
1: नून चाय।
0: नून चाय ये क्या गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है?
1: ये गुलाबी बनते है इससे, आज बहुत पुराने वक्त में, ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले, ये हम समावार में बनाते हैं, कश्मीरी समावार है ना, उसमें बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वो इंडक्शन हीटर है, बिजली पे जो चलने वाले उनपे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होते ये भी,
0: पहले जैसा स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता था ना।
1: बिल्कुल।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन सहन कैसा है।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, अपना नाम बताइए।
1: मैं गजानन नादरे बोल रहा हूँ, गिरगांव तहसील बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से।
0: स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं?
1: बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है।
0: बिल्कुल, तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव, कितनी आबादी है, क्या खासियत है?
1: कैसा है, खेती किसानी होती है दीदिया?
0: सभी लोग खेती किसानी करते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, तो पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से?
1: सभी व्यवस्था है।
0: और मौसम कैसा रहता है, बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है?
1: मौसम बदलता रहता है ना, अभी तो कैसा है बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है।
0: अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना, फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना?
1: नहीं नहीं।
0: क्या फसल बोई आपने अभी खेत में?
1: अभी तो कैसा है, इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है,
0: फिर
1: और साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की।
0: अच्छा अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी, कब इसकी हो जाएगी छटाई?
1: वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है।
0: ठीक है,
1: 4 महीने की रहती है दीदी, 4 महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन, और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की भी कर सकती है उस जगह पर।
0: अच्छा,
1: कई कई किसान करते है वैसी खेती।
0: अच्छा, यानी बारह मासी कुछ न कुछ खेत में डाला ही जाता है।
1: पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है।
0: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना, कोई ना कोई

0: फसल रहती ही है।
1: गेहूँ की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह से अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए 4 महीने ठीक रहती है ना।
0: अच्छा, चलिए, तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन करते हैं, घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं?
1: घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है।
0: हाँ, सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं?
1: मजदूर भी रहते दीदी, उतना बैठा है घर के आदमी को संभालने में ज्यादा तकलीफ होती है।
0: सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं।
1: हाँ, कैसा है, जल्दी से जल्दी कई कई बार उसकी निगरानी करनी पड़ती है।
0: हाँ बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा थी।
0: तो एक रानी है, चलिए सुनते हैं गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: अनिल नाइक बोरली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है
0: भाई?
1: आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी।
1: और 9 अगस्त क्रांति दिन था, छोड़ो भारत आंदोलन।
0: बताइए आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
1: स्वतंत्रता दिवस पर मेरे बहुत से प्रोग्राम होते हैं हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं,
0: देश प्रेम के गान होते हैं ना?
1: हाँ, और मैं भी उसमें शामिल होता हूँ।
0: आप भी गाते हैं देशगान?
1: जी जी।
0: कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर?
1: मराठी गाना।
0: बताइए गा के।
1: जय होस्तुते श्री महान मंगले दिवासपदे शुभदे स्वतंत्र से भगवती स्वामहम यशोयुता वंदे।
0: बहुत सुंदर।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी। हेलो फरमाइश,
0: नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सोनितपुर आसाम रंगापरा से अमल बसमटारी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा ये बताइए अभी आसाम

0: में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है।
1: ये बारिश हुई थी, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ये नाजिरा, गोलाघाट, चराइदेव, असम में हुआ था। ऐसे बार बहुत लोगों की जान भी चली गई है, और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये
0: जी
1: कहानी,
0: जी
1: इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनितपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए, और
0: अच्छा
1: आज भी बहुत काफी धूप दे रहे हैं। हमारे
0: हाँ
1: यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्के से बारिश आते है।
0: हाँ और अब कैसा है वहाँ माहौल?
1: यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है, लगभग इसे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी।
0: बहुत सही कहा
1: और कभी
0: आपने।
1: कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलता है, ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है।
0: जी तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर आसाम में अमल जी?
1: असम में तो हम खेत के साथ जुड़ते हो, और चाय का बगान के साथ जुड़ते हो, और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जुड़ते हो।
0: अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी स्वादिष्ट
1: जी
0: चाय
1: जी
0: होती है। आप वहाँ काम करते हैं है ना, आपके खेत में चाय की
1: हमारे
0: खेती होती
1: असम
0: है?
1: के सबसे ज्यादा सोनितपुर में ज्यादा फेमस है, जैसे का मोहन टी बगान, इसको भी ज्यादा जानते हैं, इसमें
0: जी
1: ज्यादा फेमस है ये। और
0: जी
1: हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बगान देखने के लिए मिल जाता है।
0: बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को।
1: जी जी
0: तो देखिए स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में।
1: जी जी वीर जारा फिल्म का है, ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है, और इतना रहा इनकी आवाज में।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, राधे राधे। परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरची जिला भोपाल से।
0: ये आपका गांव है?
1: नो मैम, शहर ही है।
0: अच्छा, आपका नाम बड़ा प्यारा है, परिधि।
1: थैंक यू मैम।
0: किसने रखा ये नाम?
1: मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने रखा है।
0: क्या सोच के रखा होगा?
1: मैम पता नहीं है, उन्होंने क्या सोच के रखा है पता नहीं, मेरे को तो बस यही पता है कि मेरी मम्मी पापा ने रखा है।
0: अच्छा, क्या मतलब होता है परिधि का?
1: मैम गोल चक्र होता है।
0: अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं आप?
1: हाँ मैम।
0: अभी तो बहुत छोटी हैं। आप क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के?
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ।
0: आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम?
1: मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ।
0: क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं, तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं?
1: हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ।
0: कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुँचा जा सकता है?
1: मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी हो गई जरूर समझूंगी क्या क्या करना पड़ता है इसको आने में।
0: तो मुझे एक बात बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है?
1: देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप। तो
0: कौन सा?
1: कर्मा फिल्म का।
0: हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे स्कूल में? आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है?
1: मैंने एक मोबाइल में एक स्पीच निकाली, तो मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
0: तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए।
1: हमारा बिल्कुल ईमानदारी रहना चाहिए और सब लोगों को।
0: सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना बचपन याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ।
1: हाँ मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है अभी।
0: कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है?
1: विविध भारती में जब कॉल लगता है ना तो ऐसा ही हाल होता है, सभी श्रोताओं का।
0: मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो रही है।
1: अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
0: धड़कन तेज हो गई, अब कुछ थमी?
1: हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और आपको बताऊँ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है।
0: अच्छा चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना, बारिश होना बहुत जरूरी है। चलिए,
1: और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात है, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, वो सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर जी। आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं, और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को।
0: क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो महाकाल मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है?
1: जी महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: अच्छा, और कहते भी है ना कि यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा हमने।
1: हाँ जी, खास विशेषता है।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं।
1: जी
0: तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे।
0: क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल पूछा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही
1: जी।
0: कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, और गाने के बोले हटा सावन की घटा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: आप मंदाकिनी जी बोल रही हैं?
0: जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: पीयूष मेहता, सूरत से।
0: स्वागत है आपका पीयूष जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत मजे में।
0: आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे,
1: स्थापना के समय से।
0: तब से आप सुनते हैं?
1: वो पहले शुरू से 2-4 साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था।
0: क्या बात है, तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और अब के कार्यक्रमों में क्या फर्क नजर आता है आपको?
1: प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले 2 स्टेशन से लाइव होते थे, एक स्क्रिप्ट अलग अलग अनाउंसर पढ़ते थे, गाने बजते थे, मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई है वो, बाद में वो टेप जाने शुरू हुए।
0: हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है। आप एज ए लिसनर, एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको?
1: जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है,
0: मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं, तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है, ये गुण आप में कैसे है, क्या क्या सीखा है आपने, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप?
1: मैं थोड़ा बहुत मांसर्गन बजा लेता हूँ।
0: आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा चलिए,
1: एक ही रास्ता गाने का फिल्म का सावरे सलोने के।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: क्या बात है, अभी आपकी उम्र कितनी है ये बताइए?
1: मेरी 77 अभी पूरे होने वाले हैं।
0: 77, इस उम्र में भी आप ये माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं ना?
1: कुछ हद तक बजा लेता हूँ।
0: बहुत अच्छा।
1: ऐसा नहीं बोलता कि मैं संपूर्ण कलाकार हूँ,
0: लेकिन इतने लंबे समय तक इस शौक को बनाए रखना और आज भी बजाना, हमें सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए?
1: प्रेम पत्र का गाना, ये मेरे अंधेरे उजाले पर होते।
0: अरे बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप तो, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: चौधरी का संगीत है, सलील रॉय की फिल्म और शशि कपूर और साधना की अदाकारी है
0: जी। आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते
1: जी, मैं जोधपुर से गिरधारीलाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार गिरधारी जी, नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है।
0: अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में?
1: थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा,
0: चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है, और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। आप क्या करते हैं गिरधारी जी?
1: जी मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ, और म्यूजिक का शौक है, मेरा काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, और उसमें मन लगता है काम करने में।
0: तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं?
1: विविध भारती और रेडियो सलून, हमारे स्थानीय जोधपुर।
0: संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं?
1: संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ, और मैं जो है रिकॉर्ड्स कलेक्शन करने का मेरा शौक है।
0: अच्छा,
1: मैं अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को स्टे करता हूँ, उनको डिजिटलाइजेशन करता हूँ, और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन के ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्सों को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स थे पुराने, जो नॉन फिल्मी उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है, मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठे करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था, मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड है फिर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं?
1: हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन है।
0: तो घर में आपके पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी है जिन पर रखकर सुना? हाँ, जा सकता है निडल लगा के।
1: म्यूजिक सिस्टम है सारा, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा।
0: क्या बात है, चलिए,
1: का काम चल रहा है सारा।
0: बहुत अच्छा लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आज गिरधारी जी आप?
1: फिल्म शोकिया 1951 की है, कुमार सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है, सपना बन साजन आए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार अपनी मांग बदलते रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश के समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्कन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्कन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा कायदाए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावनाओं को मजबूत कर रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रहा है। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी और युवा और नागरिक शामिल हुए। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओ, अब पेश है फिल्म संकेत। जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म से गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। साधना सरगम, उदित नारायण की आवाजें हैं, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

लीजिए पेश है असद भोपाली का लिखा ये गीत मैंने प्यार किया फिल्म से, एसपी बालासुब्रमण्यम के गाए गीत को संगीत से सवारा राम लक्ष्मण ने।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत लीजिए सुनिए, MM करीम की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल, फिल्म का नाम जक।

जख्म फिल्म से अलका याग्निक का गाया गीत आप सुन रहे थे। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। अब श्रोताओं प्रस्तुत है स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। संचार कौशल को एक प्रभावी प्रक्रिया भी माना जा सकता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति और गुणों को दिखाने का कार्य करता है। एडगर डेल के अनुसार संचार का अर्थ है सूचनाओं और विचारों का आसपास में आदान प्रदान। वॉरन एंड वेबर के अनुसार यह एक ऐसी क्रिया का तंत्र है जिसके द्वारा एक मन दूसरे मन को प्रभावित करता है। आइए संचार कौशल के सभी प्रकार के बारे में और अधिक जानते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार। मौखिक संचार तब होता है जब हम बोलकर दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। संचार का यह तरीका सीधे आमने सामने या परोक्ष रूप से किया जा सकता है, जैसे फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, रेडियो या टेलीविजन इत्यादि पर। मौखिक संचार का उदाहरण। मौखिक संचार को आगे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी औपचारिक अनौपचारिक। जब हम कार्यालय, ऑफिस या मीटिंग में बातचीत करते हैं, दैट इज फॉर्मल। जब हम किसी मित्र के साथ या पार्क में या घर के सदस्यों से बात करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। गैर मौखिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति, मुद्रा, उंगली से इशारा करना, नजरों का संपर्क, हाथों की गति, सिर हिलाना और स्पर्श आदि शामिल है। गैर मौखिक संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूचना प्राप्त करने वालों के ध्यान स्तर के बारे में अधिक सटीक विवरण देता है, जैसे कि बातचीत के दौरान श्रोता कितना गंभीर है भी या नहीं इत्यादि। गैर मौखिक संचार, उदाहरण के लिए देश में अचानक महंगाई बढ़ जाने के कारण आप कंपनी के बॉस से अपनी वेतन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। आपकी जरूरतों को सुनने के बाद आपका बॉस बात करते समय अपनी मौखिक सहमति दिखा सकता है, भले ही उसे आपकी वेतन वृद्धि में कोई दिलचस्पी न हो। इस मामले में वो आपको गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से अलग अलग संकेत देगा, जैसे आंख न मिलाकर बात करना, आहें भरना, चेहरा खुजाना आदि। यदि वह इन संकेतों को दिखाए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बॉस इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है और हो सकता है कि आपको अपने वेतन में वृद्धि न मिले। लिखित संचार यानी रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावशाली संचार के तरीके में से एक है। सभी आधिकारिक संचार, जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचना का प्रवाह, एक संगठन से दूसरे में और दूतावास से दूसरे में सूचना का प्रसारण लिखित प्रारूप में किया जाता है। भले ही कोई निर्णय या एक्शन मौखिक संचार के परिणाम हो, इसे मौखिक संचार को हमेशा कार्यान्वयन यानी अमल में लाने से पहले लिखित संचार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। लिखित संचार में संचार देने के विभिन्न तरीके होते हैं, उदाहरण के लिए ईमेल, नोटिस, पत्र, रिपोर्ट, मेमो, वेबसाइट, लेख, चैटिंग, ये सब लिखित समाचार में आते हैं। दोस्तों, खराब तरीके से लिखा गया पत्र अक्सर भ्रम पैदा करता है और शर्मिंदगी का कारण बनता है। लिखित संचार के दौरान याद रखने वाले दो महत्वपूर्ण बातें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, अच्छा लिखे, प्रीमियम शब्द डाले, व्याकरण संबंधी गलतियों से बचे, वाक्य का लेआउट ठीक से बनाए, क्योंकि इन सभी में आपकी छवि को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की उच्च क्षमता है। अपने उद्देश्यों को पूरा करें, सुनिश्चित करें कि संदेश का मुख्य भाग या सामग्री संचार के उद्देश्य के प्राप्त करने में सक्षम और विषय वस्तु के प्रासंगिक है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन संचार बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, क्योंकि आजकल का दौर जो हम करते हैं ना कि लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड्स जो भी है, और आज का आधुनिक जीवन में कम्युनिकेशन बहुत अहम हिस्सा निभाता है। इसीलिए चाहे वो स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, या कोई एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर मैनुअल वर्कर्स ही क्यों ना हो,

0: इन सभी के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाता है उसे अच्छी वेतन मिलती है और उसे अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छा जॉब भी मिल जाता है। और चाहे कितना भी स्किल्ड ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, बुरे कम्युनिकेशन से अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी खो जाते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों को अगर स्कूल में हो तो उनका कम्युनिकेशन ठीक करें। आप जो भी लैंग्वेजेस अपने बच्चों को सिखाते हो, या फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज हो, थर्ड लैंग्वेज, जैसे ही साल ख़त्म हो जाता है, जैसे ही एकेडमिक्स ख़त्म हो जाते हैं, मान लीजिए आपने बोर्ड्स के बाद सब्जेक्ट भूल जाते हैं, पर कम्युनिकेशन हमेशा ही हमेशा उनको बहुत ही यूज़फुल होगा आगे बढ़कर। और इस कम्युनिकेशन को अच्छा सीखना चाहिए। अगर बचपन से ही उन्हें एक अच्छे कॉन्वेंट में, या फिर जहाँ माहौल अच्छा है, जहाँ उनकी भाषा अच्छी की जाए, जहाँ लोग अच्छे से बात करते हैं, और उतना ही नहीं, जो भी हम घर पे बात करते हैं वो बच्चे जल्दी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, सुनते हैं और उसका ही फिर मिमिक करते हैं। इसीलिए घर पर जो भी कम्युनिकेशन हो उसे ठीक करिए दोस्तों। आजकल इतने साधन उपलब्ध है हमें, यानी वेबसाइट है हमारे लिए, फ़ोन पर भी आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है, अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है और उसे आप सुधारना चाहते हैं, तो पहले आप छोटे छोटे कदम डालिए, कुछ अच्छा सीखिए और उसे अपने घर पर अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटे, शेयर करें और बात करें, ताकि आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों को भी लाभ मिले। इसके साथ वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। एक ग्रुप एक्टिविटी के तरह सब लोग मिलकर आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ास ध्यान यंगस्टर्स पे लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो कस वर्ड्स है, जो बुरा लैंग्वेज कहा जाता है, उसे जल्दी से लोग सीख लेते हैं और अचानक मुंह से निकल आ जाते हैं। इसीलिए जितना हो सका उतना आप अपना कम्युनिकेशन को सही रखें। जो भी बुरी बात है, जो भी बैड लैंग्वेज है, उसे बिल्कुल भी अमल न करें। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं कि हमें किधर कौन सी जगह पर कैसा बातचीत करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दिस इज अ मिथ एंड अ मिसकंसेप्शन। जो भी दिमाग में जाता है वो वहाँ रहता है, और उसे यूज़ करते करते हम उसे एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों के साथ रहकर हम ऐसे ऐसे बातें इतना आसानी से बोल देते हैं, और कई अच्छे लोगों के संगति में ऐसे बुरे बात हमारे मुंह से निकलने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए सही शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों को आप रिपीट करते रहिए, ध्यान रखते रहिए, ग्रामर को खास ध्यान दीजिए दोस्तों, एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, एंड दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर लाइफ। विद दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
3: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
3: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
2: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
3: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
2: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
3: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
2: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
3: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
2: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
3: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
2: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
3: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
3: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
3: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
2: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को

0: निरूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
0: जी,
1: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
0: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
3: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
2: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
4: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
5: कौन है?
6: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
5: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
6: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
5: अमृतसर? अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
6: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
5: ये इस शीशी में क्या है?
6: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
5: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
6: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
5: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
6: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
2: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान

0: सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
1: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई।

0: और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
1: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
2: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
3: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
4: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
0: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
6: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम शोर।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी दो साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा।
1: आजादी। हाँ, अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग

0: इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
0: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं
2: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
3: My God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
4: यस सर,
3: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
3: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
5: थैंक यू सर,
3: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
5: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
3: सिपाही,
4: यस सर,
3: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
4: यस सर।
6: भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भाग

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो! अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन!
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो, अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो
3: चलो
2: चलो चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
4: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
5: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी

0: तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
1: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है, वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए, अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
1: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
2: हवाले कर दे?
1: यस।
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा।
3: ये क्या हुआ सर?
0: कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था, इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूरवीर था। शूरवीर।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत, सारे जहां से अच्छा।
5: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है, इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: से अच्छा। अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त

0: संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
2: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें।

0: प्रोफाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: तो कहिए अपने शहर अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी,
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: श्रोते हुने गैर फिल्मी गीतों सुनवा रहे मधु शर्मा स्वरित शुक्ल अशोक मस्कीन दी आवाज़ आज।

0: ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਰਿਤ ਸ਼ੁਕਲ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੈਰ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने लोक कलाओं का दस्तावेजीकरण और उन्हें जीवित रखने के लिए विशेष प्रयास करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मूर्थल में दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया। मेधावी छात्रों और शिक्षकों को उत्कृष्टता अवार्ड प्रदान किए। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ की सुखना झील पर हर घर तिरंगा पदयात्रा को झंडी दिखाई। युवाओं से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने का आह्वान किया और हरियाणा के पानीपत, अंबाला और करनाल सहित विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार देश की प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: उन्होंने कहा कि संगीत की अनेक प्रणालियां हैं, नृत्यों की कई शैलियां हैं और लोक रंगमंच के अनगिनत रूप हैं।
1: भारत एक संस्कृति संपन्न देश है, इसके तुलना पूरा विश्व से हम नहीं कर सकते। ये जोड़ों से जुड़ी हुई है। भारत जैसे भाषाएं, जैसे पहनावा, खान पान जैसे अलग अलग है, ऐसे संस्कृति, इनका नृत्य, संगीत, हर चीज अलग है। जैसे कि प्रकृति से ही ये जो संस्कृति को चुने।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि कलाकार देश भर में समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने देश की लोक कलाओं के विलुप्त होने के खतरे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी कलाओं का दस्तावेजीकरण करना और उन्हें जीवित रखने के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सोनीपत में मूर्थल स्थित दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र प्रदेश के युवाओं के कौशल, आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। इस दक्षता विकास केंद्र से सीखकर युवा सीधे उद्योगों तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र सर छोटूराम के भारत में परिश्रम करने वालों सम्मान दिलाने के विचार का आधुनिक विस्तार है। सर छोटूराम जी का कृषि विजन और आधुनिक तकनीक का यह संगम मूर्थल से पूरे प्रदेश के लिए नई प्रेरणा बनेगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने बदलाव की बयार के साथ उद्योग और अकादमिक जगत के बीच विश्वास का सेतु बनाया है।
2: यह विश्वविद्यालय बदलाव की भावना अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहा है। इस विश्वविद्यालय ने इंजीनियर संकाय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसका विस्तार विज्ञान प्रबंधन, मानविकी तथा कंप्यूटर साइंस के कार्यक्रमों तक किया है। यह मल्टीपल एग्जेक्टिव, माइनर डिग्री, स्पेशलाइजेशन और ओपन साथियों इलेक्टिव से विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिली।
0: इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों और शिक्षकों को उत्कृष्टता अवार्ड भी प्रदान किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ के सुखना झील पर हर घर तिरंगा वॉकेथॉन का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से राष्ट्रध्वज का सम्मान करने, देशभक्ति की भावना बनाए रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी से नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की अपील की और उपस्थित लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से अपने घरों व संस्थानों में तिरंगा फहराने और पोर्टल पर सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया। पानीपत में आज शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता की अगुवाई में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भाजपा जिला कार्यालय से शुरू होकर जिला सचिवालय परिसर में शहीद स्मारक पर संपन्न हुई, जहां दोनों नेताओं और अन्य गणमान्य लोगों ने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि तिरंगा यात्राओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हुए विकसित भारत के लिए काम करने को प्रेरित करना है।
3: हिंदुस्तान की जो आजादी

0: नदी है, वो लाखों लोगों की शहादत के बाद हम लोगों को नसीब हुई मिली, उन्हीं की बदौलत इस खुले वायुमंडल में सांस लेने का आज हर हिंदुस्तानी को अवसर मिल रहा है। तिरंगा हमारी आत्मा है और तिरंगा यात्रा के जरिए हर बच्चे बच्चे तक ये संदेश पहुंच गया कि भारत माँ को हमने विकसित और विश्व गुरु बनाना है।
1: अम्बाला में तिरंगा यात्रा अधोया गांव में शहीद उधम सिंह चौक से शुरू होकर बराड़ा, दो सड़का, मुलाना और साहा होते हुए तेपला स्थित शहीदी स्मारक पर समाप्त हुई। यात्रा में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुश्री ऋचा पाहवा, पूर्व मंत्री संतोष चौहान सारवान और नगर पालिका अध्यक्ष रजत मलिक सहित कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ऋचा पाहवा ने कहा कि शहीदों के सम्मान और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में निकाली जा रही ये यात्राएं पूरे भारत के देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रमाण है।
2: ये आज संकल्प है पूरे भारत का, हर हाथ में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है, हर मुंह पे वंदे मातरम और भारत माता की जय है। ये संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, विकसित भारत का जो संकल्प है आज 46 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। अब ना थकना है, ना रुकना है, ना छूना है, ना आलस करना है, अब हमें इस विकसित भारत के सपने को पूरा करना है।
1: हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज करनाल में एक भव्य साइकिल तिरंगा रैली निकाली गई। सुबह 6:30 बजे NDRI चौक से शुरू हुई इस रैली को करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस पर पूरे गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस रैली में युवाओं और सामाजिक संगठनों ने भारी संख्या में भाग लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पलवल में आज 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला पुलिस लाइन से किया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से होती हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में संपन्न हुई। इस अवसर पर राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि 10 फीट चौड़े विशाल तिरंगे के साथ निकाली गई ये यात्रा राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देती है। डाक विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए देशवासियों को डाकघरों से तिरंगा खरीदने की सुविधा दी है। इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से हर घर तक तिरंगा पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। अम्बाला के मुख्य डाकघर के प्रवर डाकपाल प्रभात गोयल ने बताया कि डाकघर में तिरंगा मात्र 25 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है।
3: हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग ने हर घर तक झंडा पहुंचाने का अभियान का बीड़ा उठाया हुआ है। लगभग 9000 झंडे 9000 इंडियन फ्लैग हमारे पास आए हुए हैं, जो मात्र 25 रुपए की डोंगर कोस्ट पर अवेलेबल है। कोई बल्क में चाहे तो हम वहाँ पर बल्क में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इंडिविजुअल चाहे तो इंडिविजुअल भी हमसे परचेज कर सकता है, होम डिलीवरी भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा है उसके थ्रू भी हम अवेलेबल करा पा रहे हैं। हमारा इंडिया पोस्ट का पोर्टल है, इंडिया पोस्ट के पोर्टल पर जाके लोग ऑर्डर करते हैं और जैसे ही हमें ऑर्डर वो मिलता है हम इमीडिएटली सेम डे कुछ ही घंटों के अंदर हम झंडा पहुंचा पा रहे हैं।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने लोक कलाओं का दस्तावेजीकरण और उन्हें जीवित रखने के लिए विशेष प्रयास करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मूर्थल में दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
1: हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: आप सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 2022 में किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको शुरू किया था। हाँ, पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज मुख्य रूप से सरकारी भवनों राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे को हर घर हर नागरिक के हृदय से जोड़ने के लिए और इससे पूरा देश जुड़ा है। आज घर घर तिरंगा अभियान देश का एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है।
1: श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम को समर्पित किया गया है।
2: इस अभियान की एक विशेष बात यह है कि इस अभियान को वंदे मातरम समर्पित किया गया इस अभियान को, क्योंकि वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे। आप जानते हैं कि वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष पूर्व साथियों की गई थी। इस मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का युवाओं में देश के लोगों में एक साहस दिया। इसके जयघोष ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित की। इस वर्ष हर घर तिरंगा और वंदे मातरम को साथ लेकर चलना हमारी नई पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का एक बड़ा अवसर है।
1: मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका का दंश झेलने वाले लोगों को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर भी बात की।
3: भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी साथियों, जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा है। उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभाजन विभीषिका में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में साथियों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की। साथियों हम हर साल की तरह इस वर्ष 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा।
1: कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल का हर भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने में अहम योगदान है। हमने सांसद नवीन जिंदल से हर घर तिरंगा अभियान पर बातचीत की।
4: हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। आप सब जानते हैं कि तिरंगे से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। 1992 से यह सफर शुरू हुआ। 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने हर भारतीय को हर रोज तिरंगा फहराने का अधिकार दिया। उस दिन से यही मेरी कोशिश रही कि यह अधिकार सिर्फ कागज पर ना रहे, हर घर तक पहुंचे। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टी के झंडों की जगह राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही थी, यह देखकर सच में गर्व होता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहता है, सिर्फ कुछ दिन क्यों? जब अधिकार 365 दिन का है तो उत्सव भी 365 दिन का होना चाहिए। इसलिए फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का अभियान है हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा।
1: श्री नवीन जिंदल ने इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनने पर कहा,
4: इस साल यह अभियान और भी खास है क्योंकि यह वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को भी समर्पित है। तिरंगा हमारी पहचान है, वंदे मातरम हमारी आवाज, दोनों एक साथ एक ही भाव। आज मैं कुरुक्षेत्र से इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन रहा हूं और आप सभी से मेरी 3 गुजारिशें हैं। पहली, हर रोज अपने घर पर तिरंगा फहराएं या घर के अंदर तिरंगा दर्शाएं। आप इसे टेबल फ्लैग के रूप में या दीवार के ऊपर या फिर अलग से फ्लैग स्टैंड के ऊपर दर्शा सकते हैं। दूसरी, हर घर तिरंगा .com पर जाएं और सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। वंदे मातरम के बोल भी वहां मिलेंगे, उन्हें जरूर पढ़ें, आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। तीसरी, अपने परिवार दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस अभियान से जोड़ें। जब हर घर इसका हिस्सा बनेगा और अपने पावन प्रतीक तिरंगे से प्रेरणा लेकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सब मिलकर विकसित भारत का निर्माण करेंगे जहां हर भारतीय संपन्न होगा, खुशहाल होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने हर घर तिरंगा अभियान को शहीदों की कुर्बानियों को याद करने का अवसर बताया।
5: करोड़ों करोड़ों किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र, व्यापारी सभी ने सैकड़ों वर्षों तक इस देश की गुलामी से मुक्ति दिला दिलाने के लिए, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। लाखों बहनों ने अपने मांग का सिंदूर पहुंचने का काम किया। कितने ही नौजवान फांसी के तख्ते पर झूले, लाखों लोगों ने सीने पर गोलियां खाई, पुलिस के अत्याचार सहे, तब जाके 15 अगस्त 1947 को इस भारत माता ने आजादी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्र सांस लेने का काम किया। उन देशभक्तों को सही

0: शहीदों को नमन करने का ये अवसर है। मैं आभारी हूँ मेरे देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन सभी शहीदों को याद करने के लिए और नमन करने के लिए पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत, क्योंकि सबसे बड़े संघर्ष और कुर्बानी का प्रतीक मेरे देश का तिरंगा है।
1: जींद नगर परिषद के चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी ने कहा कि उनकी टीम द्वारा घर घर तिरंगा पहुँचाया जा रहा है।
2: देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश के मुख्यमंत्री श्री नवाब सैनी जी की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नगर परिषद ने एक पहल शुरू करी है। जींद शहर में हमारे नगर परिषद के सभी पार्षदगण और हमारी नगर परिषद की पूरी टीम अपने अपने वार्डों में जाकर तिरंगा वितरित करने का काम करेगी, जिससे वो हर नागरिकों से आह्वान कर सके कि वो राष्ट्रभक्ति में राष्ट्र सेवा में अपना योगदान करें और अपने घर पर तिरंगा लगाएं, जींद को तिरंगामयी करने में वो हमारा योगदान करें।
1: विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की।
3: हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हम सब लोग अपने अपने घर के ऊपर तिरंगा फहराएं। स्वतंत्रता सेनानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनको नमन करें। आज पूरे देश के अंदर घर घर तिरंगा अभियान बड़ी धूमधाम से चल रहा है। मेरा सभी पंचकूला वासियों से, हरियाणा वासियों से निवेदन है कि हम अपने इस तिरंगे को, जो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है, अपने घर के ऊपर जरूर फहराएं।
1: हमने हरियाणा भाजपा की उपाध्यक्ष लतिका शर्मा से भी तिरंगे पर बातचीत की।
4: मैं सबको हर घर तिरंगा पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के प्रति गर्व और एकता की भावना का प्रतीक और भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। हम सभी का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और उसे सही तरीके से सम्मान पूर्वक और निर्धारित नियमों के अनुसार फहराएं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने घर पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और राष्ट्रभक्ति का संदेश दें।
1: कैथल में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जगजीत फौजी ने कहा कि वो सभी शहीद स्मारकों पर तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा महोत्सव चलाया और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इसको मुहिम को आगे बढ़ाया, इस पर हम अपने शहीदों को याद करते हैं। इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि पहला तिरंगा हमारे शहीदों के स्मारकों पर लगे, उसके बाद अन्य जगहों पर। 9 अगस्त को एसोसिएशन के सदस्यों ने उन परिवारों, सरपंचों, पंचों व गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर स्मारकों पर तिरंगा लगाए और उनको श्रद्धांजलि दी।
1: फरीदाबाद में हमने राष्ट्रीय कवियत्री डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी से तिरंगा अभियान पर प्रतिक्रिया ली।
6: आज देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि हर मन में देशभक्ति की लहर सी उठी है। हर घर तिरंगा देश के प्रति प्रेम की भावना दर्शाता है।
1: फरीदाबाद में हम तिरंगा गर्ल के तौर पर ख्याति पा चुकी सृष्टि गुलाटी से मिले। वो हर घर तिरंगा पहुंचाने में लगी हैं।
7: मैंने 5 साल में 10,000 से भी ज्यादा तिरंगे बांटे हैं। मेरे को जो कोई भी मिलता है, मैं सबको तिरंगा देती हूँ। मैंने अभी तक राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री जी को, आर्मी को और पुलिस वालों को भी तिरंगे दिए हैं और मुझे अपने देश के तिरंगे से बहुत प्यार है। और मैं देश के तिरंगे के ऊपर एक कविता भी सुनाना चाहती हूँ। भारत की शान है तिरंगा, भारत की जान है तिरंगा, भारत का सम्मान है तिरंगा, हम शहीदों का कफन है तिरंगा, आसमां में ऊंचे लहराए तिरंगा, हर देशवासियों की जान है तिरंगा, हमारी पहचान भी है और देश का हर नागरिक तिरंगे को लहरा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ।
1: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी और प्रस्तुति सहाय

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो तुसी इस वेले आनंद मान रहे हो पंजाबी गीतां दा। चेत सिंह ने धुन तैयार की, बोल ने रोनी अजनाली ते गिल मचराए दे, आवाज हशमत सुल्ताना दी।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का, फिल्म का नाम है लीडर।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: संगम, इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश और वैजयंती माला की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का।

सूरज। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं। यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
2: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहां से हुजूर।
3: साथी इस फिल्म का नगमा सुनिए मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीत के बोलों को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है नौशाद की।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर चले जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हर लम्हा हर पल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: माला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत है और फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं, हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो

0: बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
0: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
2: साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है जिंदगी।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

0: इब्तदानों मेहरबानों, आपने बहुत बड़े बड़े तमाशे देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े तमाशे वाले जादूगर देखे होंगे। बच्चा लोग, अरे बच्चा लोग, जरा बैठ जाओ। भीड़ होने पर बड़े लोग तुम्हें तमाशा नहीं देखने देंगे। हाँ ऐसे। अच्छा बच्चा लोग, अब ताली बजा दो। हाँ तो मेहरबानों कदरदानों, अब ठीक है। अरे भाई जेंटलमैन, अरे तुम कहाँ चल दिए? क्या तमाशा अच्छा नहीं लगता है तुमको?
1: तमाशा हो कहाँ रहा है जो देखने के लिए रुक जाऊं? तुम तो बातें ही बनाते जा रहे हो। अगर कुछ जादू वादू दिखाना है तो जल्दी दिखाओ।
0: अरे कदरदान, मजमा जमाए बिना जादू देखने दिखाने का मजा कहाँ आता है?
1: जादू वो जो सिर चढ़कर बोले, समझे? तुम्हारा जादू अच्छा होगा तो लोग अपने आप रुकेंगे, बोर करोगे तो कौन रुकेगा तुम्हारे पास?
0: लगता है तुम्हें जादू देखने की काफी जल्दी है।
1: अगर दिखा रहे हो तो जादू देखना ही पड़ता है, इसमें जल्दी वल्दी की कोई बात नहीं।
0: अरे भाई माफ करना, अरे तुम जानते ही हो सबको रोटी का चक्कर होता है, सो मुझे भी है। कुछ लोग और जुट जाएंगे तो रात को बच्चों के लिए खाने का जुगाड़ हो जाएगा। जमुरे जमुरे, अरे ओ जमुरे, अरे क्या बात है, लगता जमुरा अभी सो गया है।

0: चमुरे, ओ चमुरे, अरे भाई क्या वाकई ही सो गया है?
1: नहीं उस्ताद, भला मैं क्यों सोने लगा?
0: तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहा है?
1: उस्ताद, भूख के मारे बोला नहीं जा रहा।
0: बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, मूर्ख पहले कुछ कमा तो लो, बिना कमाए भला रोटी कहाँ से खाएगा?
1: तो फिर उस्ताद जल्दी कमाओ ना।
0: अरे इन साहिबान को तो जल्दी जाने की पड़ी है, तू कमाने की बात कह रहा है? खैर हो सकता है इन्होंने किसी को टाइम दे रखा हो।
1: उस्ताद तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने वाकई किसी को मिलने का टाइम दे रखा है।
0: तो फिर ये जाएं?
1: जाने से इन्हें कौन रोक सकता है उस्ताद, पर ये जाएं कैसे?
0: अरे भाई अपने पांव से चलकर जाएंगे।
1: चलकर ये नहीं जा सकते उस्ताद।
0: ये मिलने वाला दूर होगा तो ये बस, गाड़ी, टैक्सी, अरे किसी भी सवारी से जा सकते हैं।
1: पर ये नहीं जा सकते ना उस्ताद।
0: चमूरे तू तो बड़ा जोशी रखता है भाई।
1: उस्ताद अगर जोशी नहीं तो लोगों को ठगने वाले गुरु का चेला तो हूँ ही ना।
0: बेवकूफ, पता है तू ये क्या कह रहा है? कहने से पहले अपनी समझदारी से भी कुछ काम तो ले लिया कर।
1: उस्ताद खूब सोच समझ लिया।
0: इस तरह तो तूने अपने उस्ताद यानी के मुझे ही ठग कह दिया।
1: पहले इन साहिबान से पूछ लो उस्ताद, क्या ये किसी से मिलने गाड़ी, टैक्सी या बस से जा सकते हैं?
0: हाँ तो भाई साहब, क्या तुम गाड़ी, बस या टैक्सी से जा सकते हो?
2: हाँ, क्यों नहीं जा सकते?
0: जमुए, ये तो किसी भी तरह जा सकते हैं।
1: पर इनके पास तो पैसे ही नहीं है।
0: जमुए, ये तूने कैसे कह दिया कि इनके पास पैसे ही नहीं है?
2: क्यों, मेरे पास पैसे नहीं है क्या? ये देखो मेरे पास, अरे पेंट की पीछे की जेब में, पर जेब में भी नहीं, अरे है ये किसी जेब में भी नहीं। अरे अरे मेरा बटुआ कहाँ गया?
0: अरे मेहरबान, दूसरी जेब में देख लो। दूसरी जेब में? अरे भाई कमीज की जेबों में देख लो।
2: अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पेंट की पीछे की जेब में बटुआ रखा था। मैंने सारी जेब देख ली, किसी भी जेब में नहीं है।
0: लगता है तुम्हारी जेब कट गई है।
2: ये तुम्हारे तमाशे की वजह से हुआ है। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। यहाँ से कोई मत हिले, मैं सबकी तलाशी दिलवाऊंगा पुलिस को।
0: अरे जमुरे, जमुरे, अरे हमारा तमाशा तो बीच में ही रह गया। या तो तमाशे में तमाशा हो गया, इन साहिबान की जेब कट गई, इन साहिबान की जेब कट गई जमुरे।
1: उस्ताद,
0: हाँ, या पुलिस लेने जा रहे हैं।
1: उस्ताद इन्हें कहो कि पहले हमें दो रोटी कमाने दे। उस्ताद अगर पुलिस आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा उस्ताद?
2: हार में जाए तुम्हारी रोटी, मेरा बटुआ खो गया है, किसी पगड़मार ने पगड़ मार दिया लगता है।
0: जमुरे अब क्या किया जाए?
1: उस्ताद इन्हें कह दो कि चिंता मत करें, इनका बटुआ यहीं कहीं होगा। अगर नहीं मिला
0: तो क्या जमुरे?
1: तो क्या होना है, कहीं से बटुआ ना मिला तो 200 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे।
0: जमुरे तू भी कैसा चेला है रे, हर बात में गुरु को ही चूना लगाना चाहता है।
2: अरे मैं कहता हूँ यहाँ कोई खेल तमाशा नहीं होगा, पहले मेरे 200 रुपए ढूंढ कर दो, समझे?
0: जमुरे, हमारे पास तो 2 पैसे भी नहीं है। ये 200 रुपए की बात करते हैं, अब भला हम 200 कहाँ से लाएंगे? हाँ, तमाशा दिखाकर लोगों के सामने झोली फैलाएंगे तो मुश्किल से 10-20 रुपए बनेंगे।
1: लगता है उस्ताद तुम भी डर गए।
0: क्यों ना डरूं भाई, 200 रुपए का सवाल है।
1: 200 रुपए के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता उस्ताद। हाँ, मैं इनका बटुआ जरूर दिला सकता हूँ।
0: अरे जमुरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले सोच भी लिया?
1: खूब सोच लिया उस्ताद। पहले इनसे पूछो कि इनके बटुए का रंग क्या है।
0: हाँ साहब, तो ये बताओ कि तुम्हारे बटुए का रंग क्या है?
2: मेरे बटुए का रंग लाल है, उसके ऊपर की छोटी जेब में मेरा फोटो भी लगा हुआ है, समझे?
0: फोटो भी लगा है जमुरे।
1: उस्ताद इनसे ये भी पूछो कि इनकी फोटो के नीचे किस लड़की का फोटो है।
0: हाँ तो कदरदान मेहरबान, जमुरा जानना चाहता है कि तुम्हारी फोटो के नीचे किसका फोटो है।
2: और कोई फोटो नहीं है, सिर्फ मेरा फोटो है मेरा।
0: जमुरे,
1: हाँ उस्ताद।
0: अरे जमुरे, ये साहिबान तो इनकार करते हैं किसी दूसरे का फोटो होने से। हाँ,
1: इतने अच्छे आदमी होते हुए ये बताना नहीं चाहते उस्ताद कि दूसरा फोटो किस लड़की का है। मैं तो इनको यही सलाह दूंगा उस्ताद कि अगर बटुए में फोटो ही रखना है तो उस लड़की का रखें जिसे ये हासिल कर सके। लो, देख कर इन्हें ये बटुआ लौटा दो उस्ताद।
2: अजीब बात है, मेरी जेब में से निकलकर बटुआ जमुरे के पास कैसे चला गया?
0: तो मेहरबान कदरदान, यही तो जादू है जो तुम देखना चाहते थे।

0: देखो दूसरा जादू, तुम्हारी फोटो के नीचे देवी का फोटो है।
1: पर इसमें इसमें से 200 रुपए कहाँ गए?
0: बटुए में होंगे।
1: इसमें मगर इसमें तो नहीं है।
0: अरे जमूरे, हम पर तो चोरी का इल्जाम आ रहा है भाई।
2: उस्ताद तुमने और भी कई जादू दिखाने होंगे, जल्दी से इनके 200 रुपए दे दो।
0: जमूरे क्या हर बार तू मुझको ही चूना लगाएगा? बटुआ तुम्हारे पास से निकला है और 200 रुपए मैं दूंगा।
2: तो फिर 200 रुपए इनकी जेब में ही होंगे, और कहाँ जाएंगे उस्ताद?
0: भाई साहब, हम गरीबों को काहे को मारते हो? हम पर शक करने से पहले अपनी जेबें तो टटोल लीजिए।
1: अरे मेरी जेब में पैसे कहाँ से आएंगे? रुपए बटुए के अंदर थे, बटुए के, समझे?
0: फिर भी सभी सभी जेबें टटोलने में हर्जी क्या है कदरदान?
1: अरे तुम्हारे सामने ही तो मैं सभी जेबों में हाथ डालकर देख रहा हूँ।
0: अब वो कमीज की वो आगे की जेब भी देख लो कदरदान।
1: कमीज की? ये लो, ये अभी।
0: अच्छा
1: ये, अरे 200 रुपए, अरे ये इसमें इस जेब में थे।
0: कदरदान, आपने ये पहला जादू देखा, क्योंकि ये सांप देखने के लिए बहुत जल्दी मचा रहे थे, इसलिए सबसे पहले इनको ही तमाशा बनना पड़ा। मैं आपको बहुत बड़े बड़े जादू दिखाऊंगा। मैं ऐसे जादू दिखाऊंगा कि जिन्हें देखकर आप सब दांतों तले उंगली दबाने लगे होंगे। तो जमूरे, तमाशे के आखिर में आज कौन सा जादू दिखाया जाए?
2: उस्ताद जो तुम्हें अच्छा लगे।
0: हमारे जादू तो सब अच्छे हैं बच्चा, भला अपना बच्चा किसे बुरा लगता है?
2: तो फिर वो दिखाओ उस्ताद जो देखने वालों को अच्छा लगे।
0: पहले जादू की तरह दूसरे जादू भी बहुत अच्छे हैं बेटा। बच्चा लोग एक बार फिर ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। तमाशे के आखिर जादू इस टोपी का होगा। सब लोग टोपी को देख लो, बिल्कुल खाली है। अरे साहिब कदरदान, जरा अच्छी तरह से टटोल कर देखो, टोपी खाली है ना?
3: बिल्कुल।
0: लो हाथ में पकड़ कर देख लो, ये आप भी देखिए, ये आप भी देखिए, खाली है ना? मैं इसे बीचो बीच यहाँ रख देता हूँ, जब मैं इसे उठाऊंगा तो नीचे से एक ऐसी चीज निकलेगी, ऐसी चीज निकलेगी जिसे देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे।
2: उस्ताद बातें बंद करो और दूसरे जादू जल्दी से दिखाओ।
0: जल्दी से दिखाता हूँ, ठीक है ठीक है।
4: क्या भूख, नए नए जादू दिखाए
5: जी, क्या
1: बात यार, वो आखिरी जादू तो देखा ही नहीं।
0: जमूरे जमूरे,
2: आओ उस्ताद।
0: अरे आप क्या लेटा ही रहेगा?
2: उस्ताद मैं तो हुकुम का गुलाम हूँ, उस्ताद जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा।
0: जमूरे, इस दुनिया में कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब अपने पेट के गुलाम है।
1: मदारी भाई, इस समय तो तुमने हमें अपना गुलाम बना रखा है, बल्कि तुम्हारी टोपी के गुलाम बन रहे हैं। जानने की बड़ी बेचैनी हो रही है, टोपी के नीचे क्या है?
0: जमूरे जमूरे,
2: हाँ उस्ताद।
0: अब तू भी उठ जा।
2: अच्छा उस्ताद।
0: और उठकर टोपी का जादू देख ले।
2: उस्ताद भूखे पेट भक्ति नहीं होती उस्ताद, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं।
0: पर बच्चा, चूहों को खिलाने के लिए अभी कोई पैसा भी तो नहीं मिला है।
2: क्या, अभी तक किसी ने कोई पैसा नहीं दिया उस्ताद?
0: देंगे देंगे जमूरे, देंगे, सब लोग देंगे। तू अपनी चादर बिछा दे, फिर देखना किस तरह बारिश की तरह पैसे बरसते हैं।
2: मुझे तो ऐसा लगता है उस्ताद कि जब तक तुम टोपी का जादू नहीं दिखाओगे, देखने वाले एक पैसा नहीं देंगे।
0: बच्चा, किसी से कोई पैसा नहीं मांगते हैं, ये तो हमारे जादू के काम पर खुश होकर हमें इनाम देंगे।
2: हमने इतने अच्छे अच्छे जादू दिखाए हैं उस्ताद, क्या ये अभी तक भी नहीं हुए खुश? साहब लोग अभी भी जेब में हाथ डालने से झिझकते हैं।
0: तो बहुत जल्दी बेसब्र हो जाता है जमूरे। देखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने हमें इनाम जरूर देना है।
2: अब क्या अपना कलेजा निकाल कर इन्हें खुश करना पड़ेगा उस्ताद?
0: हमारा काम है तमाशा दिखाना, तुमने टिकट तो लगा नहीं रखा। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। टोपी का जादू तभी दिखाया जाएगा जब सब लोग इनाम देंगे। बस 2 मिनट का वक्त और लूंगा।

0: वाह कमाल हो गया, लगता है सबको हमारा तमाशा अच्छा लगा है उस्ताद।
1: तो जनाब मेहरबान कदरदान, आप लोगों ने हम गरीब

0: जीवन पर बहुत तरस खाया है, माया से हमारी झोली भर दी है। ये पापी पेट इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। पापी पेट तो राजा को भी भीख मांगने के लिए मजबूर कर देता है, इसलिए इस टोपी के नीचे भी पेट का ही जादू है। तो कदरदान मेहरबान, अब मैं ये टोपी उठा रहा हूं, तो देखिए लीजिए देखिए।
1: अरे रोटी का
2: टुकड़ा
1: निकला।
3: अरे रोटी
1: का रोटी का टुकड़ा।
4: अरे इससे बढ़कर और क्या जादू होगा। दुनिया में हर कोई रोटी के जादू से वशीभूत होकर इधर उधर भाग रहा है। वाह उस्ताद वाह, भाई कमाल कर दिया तुमने। वाकई
5: आज के हवा महल कार्यक्रम में आप सुन रहे थे झलकी तमाशा। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे गुरुमीत रामलमीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरी, फिल्म का नाम है लम्हे।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं शिल्पा राव की आवाज में। गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, संगीत है अमित त्रिवेदी का, फिल्म का नाम है इंग्लिश विंग्लिश।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।
4: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक,

0: और एक प्राध्यापक। तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक, सपना मुखर्जी और अभिजीत की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है जुदाई।

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई।

0: उपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपया घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की।

0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे

0: के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।
3: ਇਹ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰੀਲੀ ਧੜਕਨ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਪਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਸਲਮਾ ਕਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਥੀਓ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार है सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है बहार।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। तर्ज है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है रंगोली।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है देवदास।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी। गीत को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: Gusta rima.
1: ਇਸ ਨਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਕੇ ਲਿਏ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ ਲਵ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
2: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: Because jab tak ek individual ye nahi samajhta ki mujhe mental health ki issues hain, mujhe hospital jana hai ya mujhe kisi se connect karna hai, tab tak next step aata hi nahi hai. We do not then talk about what rights he has or what where he can go. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, वेदर ही इज हेल्दी और नॉट, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, एंड वी यूजुअली इग्नोर द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट एंड द सोशल. सो WHO हैज आइडेंटिफाइड दैट मेंटल हेल्थ इज इंटीग्रल टू हेल्थ. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, व्हाट इज मेंटल हेल्थ? इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू कोप अप विद दोज थिंग्स, आर वी प्रोडक्टिव डिस्पाइट हैविंग टू फेस वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ. सो इफ वी आर एबल टू डू सो, वी वुड से दैट आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम एबल टू डील विद माई मेंटल हेल्थ एडिक्वेटली. देयर आर वेरियस सिचुएशंस इन लाइफ, वेदर इट इज एट वर्क प्लेस, फैमिली, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain. And at the same time, we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. Agar hamare paas ek bacche ke saamne exam ho hi nahi, to wo padega hi kyun? To exam ek tarah se uske liye stress bhi create karta hai, par dusre perspective se usko ek challenge bhi milta hai ki mujhe aage seekhna hai. But at the same time, after a certain amount of stress, we become dysfunctional. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है. दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प. इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस एडिक्वेटली, वी आर फाइन.

But if we are not able to face the coping, we are not able to face those challenges, then we start having headache ho raha hai, mujhe bahut thakan lagti hai, mere ko neend nahi aa rahi hai. So these are some of the signs and commonly reported symptoms, whether they are in the form of physical issues, kyunki aksar hum mental health issues ko bhi physical ka naam dete hain. Hame mehsoos yahi hota hai ki hamare sharir mein thakan hai, but actually the cause may be at the mental level. Ye kehna ki kab udasipan, डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है. जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन विच इज वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज वर्ड अमंग द पब्लिक. सो हाउ डू वी रिकोगनाइज दीज साइंस? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा कोई नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली. सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बार पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम दिस बिहेवियर नीड्स टू बी attended to. At a social level, we don't want to interact with people, we don't want to respond to people, respond to family members. Choti choti cheezon ko leke hum nervous ho jate hain. Sometimes we say that mujhe lag raha hai ki bas zindagi ka ant aa gaya hai. So these kind of emotional responses also are a matter of concern and may be an indication for mental illness. So, मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोज के रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, I get up in between at night, or there is a change in my interactive. पहले बहुत ज़्यादा socialization होती थी, अभी मैं मेरा मन नहीं करता है. So these are gross signs which may be due to any reason, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हाथ हैंड वॉशिंग होती है, तो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट दिस इज अबाउट. मैनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस, पीपल डू रिपोर्ट मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है, इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल. अक्सर देखा गया है कि इंडिविजुअल्स हु डू ट्राई टू कमिट सुसाइड, दे डू से, दे वर्बलाइज देयर problems, their helplessness, and they seek help, which we most often in our peer groups we do not recognize. Later on, अरे उसने तो ऐसा कहा था. Sometimes individual report मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. These may be signs for psychosis. Sometimes we say that बहुत anxiety, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया, it may be a panic attack. So we need to seek help rather than face that mera log mazak udayenge to main nahi jata hu dikhane. At times if it is possible, to teachers setting mein ya parents jo educated hain, we have small self administered questionnaire which can actually tell you ki ye is 10 item

0: में से इतना कट ऑफ 2 के ऊपर है, दैट मीन्स यू नीड टू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. PHQ, GAT, 7 आइटम्स, 9 आइटम्स, इट्स हार्डली एनीथिंग, वेरी सिंपल आइटम्स विच कैन बी यूज इन कम्युनिटी.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

0: करना और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
4: हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म अभिनेत्री वैजयंतीमाला पर।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जन प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंती माला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंती माला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो कामयाबी के शिखर छुए ही मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की भी वो बेहद लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री साबित हुई।

13 अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेन में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंतीमाला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंतीमाला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: इतने कपड़े लगते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं, ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सुनो, परदेश में एक तासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
2: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में अकेले कैसे जाओगी, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
2: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
2: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
2: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास।
2: नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं।
1: जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।
2: अब फिर कब मिलना होगा?
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा, तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें।

0: लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
1: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।

देवदास के लिए वैजयंती माला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंती माला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंती माला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमति अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी सराही गई।

0: लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे के लिंके।
2: अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है। फाउंटेन
1: लावा है, चलक ना ही सारी सेकी निकाल दे हो एक मिनट में।
2: अरे बाह रे महारानी बाह, फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
1: फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौनो दिन?
1: हाय हाय, तेली का तेल जले, मसालची की छाती फटे, तोरी छाती का है पटेरे। एक हराती का था, इको समझाए दियो
2: ने तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है दिखा।
3: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर हटे।

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

0: क्या होना, क्यों सताते हो? होगा, होगा।
1: फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंती माला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार।

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंतीमाला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

0: सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।
1: थैंक।

वैजयंती माला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचेंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंती माला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंती माला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

पेशे खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। ये बरखा की बूंदें, ये सावन की अंगड़ाइयां, यादों की पुरवाइयां, ये मिलन की रात, शाखों पर झूमते फूलों की बहार, प्यास बनकर छलकती है ये रात। डर लगता है इन हवाओं से, न दामन से लिपट जाएं, एहसास की पहने चुनर दिल के अंजुमन में वो आए हैं। उस पर उनका ये फरमाना कि दीवाने को क्या कहिए, बड़े करिश्माई कातिल हो, कहूँ तो किससे कहूँ, दरमियाँ हमारा ही दिल है,

सावन की फुलवारियां चमन में बहार लाई है, चांद की नजीर किरणों से धुले शबनम के ये मोती हैं, आंचल में सिमटते बूंदों के खजाने, खनक बहारों की पाजीब तारों की, मेहरबान मौसम के शरारे भर देते हैं गीतों मितान मोहब्बत की, पत्थरों में भी तड़प जगा देते हैं, उफ ये मौसम किसे न अपना शैदाई बने।

0: ये वही मौसम है, वही मोहब्बतों के निशान, जो अक्सर तन्हा बारिशों में भीग जाते हैं। खबर होती नहीं, दिल बज़्म में आपकी बारहा चला आता है। सागर में लहरों की तरह, तूफान में किनारों की तरह, हर घड़ी मेरे सब्र को आजमाते क्यों हो। ऐसी बरसात फिर फूलों से प्यार किसे न होगा, बारहा मुझ पे ही इल्जाम लगाते क्यों हो।
1: न झटको जुल्फ से पा...

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। आप आए तो हवाओं को गुनगुनाना आ गया, आप आए तो कलियों को मुस्कुराना आ गया। ये बरसती फुहारें कहीं प्यास जगाती हैं, कहीं फूल खिलाती हैं। रखा है हमने भी दिल को संभाले कि ये एहसास से खता हो न जाए, रंग मोहब्बत का फसाना मशहूर हो न जाए।

सब खताएं बारिशों की हैं, मानो कि न मानो, ये बदली का खिलखिलाना, ये आसमां का गुरूर, आंखों में रात का कजरा लगा लाए हो, बूंदियां बरसेंगी, भीगेगी बहार, धीरे धीरे से आरज़ूओं का महताब चमकेगा, करार खो के भी करार आता नहीं, इश्क कहते हैं जिसे, शायद ये वही शय है।

भीगी रात में आज खामोशियों को बयां होने दो, पास बैठो कि नजरों को यकीन आ जाए। दिल आपका शैदाई है, जाए तो कहां जाए। आज कुछ कहने की रात आई है, बड़ी मुद्दत के बाद ये सावन की घटा छाई है। रंग फूलों का इस तरह सजाया है आपने, जैसे जमीन पर आसमां बिछाया है आपने।

0: आज के छह गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं

0: दोस्तों आकाशवाणी चंडीगढ़ ते तुसी पंजाबी गीतां दा आनंद माण रहे हो। प्रोग्राम है सुरसांझ। प्रोग्राम विच सतिंदर सरताज दा गीत असी शामिल करांगे। संगीत होवेगा शाश्वत सचदेव दा, पर पहला ए अंतराल।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर?

0: दोस्तों आकाशवाणी चंडीगढ़ तो तुसी पंजाबी गीतों का आनंद माण रहे हो। प्रोग्राम है सुरसांझ। प्रोग्राम विच सतिंदर सरताज का गीत असी शामिल करांगे। संगीत होवेगा शाश्वत सचदेव का, पर पहला ए अंतराल।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: ਸੋ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੀਤ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਲੇ ਸਖਤਰ ਦੀ।

0: शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
1: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: तो कहिए अपने शहर, अपने गाँव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz 'ਤੇ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ. जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी।

0: नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। रात दे 11:05 होए ने। हुण साडे केंद्र तों अज दे प्रोग्रामां दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा विच फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ। जय हिंद।